0: बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित, भारत ने हमले की कड़ी निंदा की। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट यूजीसी काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु को नवीं वरीयता मिली। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को पांचवीं वरीयता। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय ध्वज वाला वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूरे औलैया कल यमन तट के पास हमले के बाद लाल सागर में डूब गया। पोत पर सवार सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 13 भारतीय थे।
3: भारतीय ध्वज वाला यह वाणिज्यिक पोत सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया, यमन के जल क्षेत्र के पास मिसाइल हमले के बाद पोत लाल सागर में डूब गया। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत इस अकारण हमले की कड़ी निंदा करता है और हमारे लोगों की सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की लगातार घटनाएं चिंताजनक है। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना आया जाना बंद होना चाहिए और क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से निर्बाध नौवहन और व्यापार शीघ्र बहाल किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
2: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों की हिंसा ही वहां की वास्तविकता है।
4: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
2: श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि अगले महीने 12 और 13 तारीख को भारत की मेजबानी में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को आमंत्रित किया गया है। भारत इस साल ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह बैठक आज और कल भोपाल में आयोजित होगी।
5: भोपाल में आज से ब्रिक्स देशों की बड़ी सांस्कृतिक बैठक शुरू हो रही है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ये आयोजन 8 अगस्त तक चलेगा। इसमें ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह और संस्कृति मंत्रियों की बैठकें होंगी। इसके चलते भोपाल को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तरह सजाया गया है। इस आयोजन से सांस्कृतिक संवाद बढ़ेगा और सदस्य देशों के बीच सहयोग मजबूत होगा। पहले 2 दिन अधिकारी स्तर पर चर्चा होगी जबकि आखिरी 2 दिन मंत्री स्तर पर घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। भारत ने इस बैठक में 2 अहम प्रस्ताव रखे हैं। पहला, कलाकारों और सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी के लिए साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म बना

यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए।

0: और दूसरा यूनेस्को में सदस्य देशों के साथ मिलकर साझा नामांकन भेजने की पहल करना। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषणा करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। नीतिगत निर्णय मौजूदा भू राजनैतिक तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व पर दबाव के महत्वपूर्ण दौर में आ रहा है। यह आशा है कि आरबीआई प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और जारी करने को कहा है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों से शिकायत निपटान प्रणाली मजबूत करने, धोखाधड़ी की गई धनराशि वापस लाने तथा डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने की प्रक्रिया में सुधार करने को कहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है।
2: झारखंड की राजधानी रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इस समय युवाओं के आक्रोश और आंसुओं का गवाह बना हुआ है। जेपीएससी परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ छात्र सड़कों पर हैं, लेकिन विडंबना देखिए, व्यवस्था का रुख इतना कड़ा है कि कड़ाके की धूप और खुले आसमान के नीचे बैठे इन प्रदर्शनकारियों को पीने का पानी, खाना और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नसीब नहीं हो पा रही है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने इस मुद्दे पर विपक्ष के मौन रहने पर तीखा हमला बोला है। आंदोलन स्तर पर बुनियादी संकट गहराने के बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी हेमंत सोरेन सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: मेडिकल परामर्श समिति नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू करेगी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान आज से 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक होगा। हालांकि शुल्क भुगतान 12 अगस्त शाम 6 बजे तक किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
3: अभ्यर्थी कल से 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। अपना चयन बताने की सुविधा 13 अगस्त सवेरे 11 बजे बंद हो जाएगी। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को एमसीसी पोर्टल पर पंजीकरण, चयन भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया समझने में सहायता करने के लिए वीडियो जारी किए हैं। इन वीडियो का उद्देश्य काउंसलिंग प्रक्रिया को सरल और विद्यार्थी अनुकूल तरीके से समझाकर उम्मीदवारों को मार्गदर्शन देना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की

0: सुविधा देगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं।
1: वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले अनुपूरक बजट में इस विशेष पहल को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा का वायदा किया था। इस निर्णय से राज्य भर में लाखों वरिष्ठ महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने महिला कल्याण विभाग को 1,094 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटित किए हैं, जिससे निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और मध्य प्रदेश में कल तक तेज बारिश हो सकती है। केरलम में आज भी तेज वर्षा जारी रहेगी, हालांकि कल की तुलना में आज बारिश में कुछ कमी का अनुमान है। असम में लगातार तेज बारिश जारी है और इससे राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने असम के लगभग सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 24 घंटों में पूरे राज्य में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पीवी सिंधु को BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में नवी वरीयता दी गई है। ये चैंपियनशिप 17 से 23 अगस्त तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। चैंपियनशिप में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को पुरुष डबल्स में 5वीं वरीयता मिली है। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स में 14वीं और ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में 15वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। चैंपियनशिप की पांचों स्पर्धाओं में भारत के दो दो खिलाड़ी भाग लेंगे। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 आज से अमरीका में शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्यों वाली भारतीय टीम हिस्सा लेगी। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी 16 अगस्त से आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। अमृत उद्यान का 15 सितंबर तक भ्रमण किया जा सकता है। अमृत उद्यान में प्रवेश निशुल्क है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर साइबर ठगी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश और एयर इंडिया की फ्लाइट 2379 के अचानक हवा के दबाव में फंसने से यात्रियों की हुई कठिनाई के समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। जनसत्ता का शीर्ष समाचार है, साइबर ठगी वाले खातों से निपटने के लिए 4 हफ्ते में बने मानक संचालन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट। दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, 4 सप्ताह के भीतर म्यूल खातों से निपटने को SOP बनाए RBI। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाथों पर नियम बनेंगे। पंजाब केसरी ने एयर इंडिया विमान की उड़ान संख्या 2379 के समाचार को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। शीर्षक दिया है, एयर इंडिया विमान टर्बुलेंस में फंसा, पत्र ने इस घटना में घायल यात्रियों की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। दैनिक भास्कर ने इस खबर को शीर्षक दिया है, थाईलैंड से दिल्ली आ रहा विमान टर्बुलेंस में फंसा, DGCA ने जांच के आदेश दिए। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, जन्म मृत्यु पंजीकरण सुरक्षा उपाय नागरिकों की मुश्किल ना बने।
0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर, लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। NEET UG काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। और मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल, जिसे आप अपने मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं, सुन रहे हैं। समय हो चुका है भाव प्रधान गीतों और बातों के कार्यक्रम रसधारा का। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कल्पना नागर की आवाज के साथ, सुनेंगे रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ गीत। कार्यक्रम में आज जिस विषय पर बातचीत करेंगे वो विषय है वीरांगनाएं और स्वतंत्रता।

जब बात हो देश की तो वहां स्त्री और पुरुष का भेद मिट जाता है। जब बात हो समाज की तो स्त्री और पुरुष का भेद मिट जाता है। जब बात हो परिवार की तो स्त्री और पुरुष का भेद खत्म हो जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम केवल वीरों के पराक्रम की कहानी नहीं

बल्कि ये उन असंख्य वीरांगनाओं के अदम्य साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति का भी इतिहास है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत की स्वतंत्रता की नींव को मजबूत किया। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं की महिलाओं ने अपने अपने क्षेत्रों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष किया। किसी ने तलवार उठाई, किसी ने क्रांतिकारियों को आश्रय दिया, किसी ने आंदोलन का नेतृत्व किया तो किसी ने कलम और भाषण के माध्यम से जन जागरूकता का बीड़ा उठाया। इन वीरांगनाओं ने यह सिद्ध किया कि स्वतंत्रता का अधिकार स्त्री और पुरुष दोनों का समान स्वप्न है। ऐसा ही है देश हमारा।

बात करें अगर उत्तर भारत की, तो अनेक महान वीरांगनाओं को जन्म दिया है यहाँ की माटी ने। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अद्वितीय वीरता का परिचय दिया। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, उनका ये संकल्प आज भी देशभक्ति का प्रतीक है। अवध में बेगम हजरत महल, लखनऊ में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया और अवध की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। सरोजनी नायडू ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्हें भारत कोकिला नाम से भी जाना जाता है। अरुणा आसफ अली ने वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा प्रदान की। दुर्गा भाभी, दुर्गावती देवी ने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अन्य क्रांतिकारियों की सहायता कर अंग्रेजी शासन को चुनौती दी। उन्होंने अनेक जोखिम उठाकर क्रांतिकारी गतिविधियों को सफल बनाया। महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान जैसी साहित्य से जुड़ी हुई लेखिकाओं ने अपनी कलम से एक अलग तरह का आंदोलन जारी रखा। कार्यक्रम रसधारा, जहां आज हम बात कर रहे हैं वीरांगनाएं और स्वतंत्रता संग्राम की।

आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल कार्यक्रम रसधारा। आज बात कर रहे हैं हम वीरांगनाएं और स्वतंत्रता की। बात करें अगर दक्षिण भारत की, तो महिलाओं ने विदेशी सत्ता के विरुद्ध असाधारण साहस दिखाया। रानी वेलु नचियार, जो तमिलनाडु से संबंध रखती थी, उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने वाली भारत की पहली रानी माना जाता है। उन्होंने संगठित सेना बनाकर अंग्रेजों को पराजित किया। रानी अब्बक्कट्टा चौटा, कर्नाटक से संबंध रखने वाली इस रानी ने विदेशी शक्तियों के विरुद्ध समुद्री युद्धों में अद्भुत नेतृत्व किया और अपने राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा की। कर्नाटक की कित्तूर रानी चिन्नम्मा अंग्रेजों की लैप्स नीति का विरोध करते हुए सशस्त्र संघर्ष किया। उनका आंदोलन 1857 से पहले ही स्वतंत्रता की चेतना का प्रतीक बन चुका था। कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व किया और महिलाओं को सैन्य शक्ति के रूप में संगठित किया। केरल की अक्कम्मा चेरियन को केरल की झांसी की रानी कहा जाता है। उन्होंने जन आंदोलनों का नेतृत्व कर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लोगों को संगठित किया। कार्यक्रम जारी रहेगा पूरे 10 बजे तक। फिलहाल भारत की बात सुनाता हूँ महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज में।

स्वतंत्रता आंदोलन में पूर्वी भारत की वीरांगनाओं ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। हर किसी का जिक्र संभव नहीं, लेकिन याद करना चाहूंगी कुछ प्रेरणादायी महिला स्वतंत्रता सेनानियों को, जिनमें नाम शामिल है मातंगिनी हाजरा का। पश्चिम बंगाल की मातंगिनी हाजरा ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तिरंगा लेकर आगे बढ़ते हुए गोलियां खाई, लेकिन झंडा हाथ से छूटने नहीं दिया। प्रीतिलता वाड्डेदार। बंगाल की प्रीतिलता ने क्रांतिकारी संगठन के साथ मिलकर अंग्रेज अधिकारियों के ठिकानों पर साहसिक कार्रवाई की और गिरफ्तारी से बचने के लिए विषपान कर वीरगति प्राप्त की। चटगांव शस्त्रागार कांड की प्रमुख क्रांतिकारी कल्पना दत्त, उन्होंने मास्टर दा सूर्यसेन के

0: साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। असम की कनकलता बरुआ ने मात्र 17 वर्ष की आयु में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तिरंगा लेकर जुलूस का नेतृत्व किया और पुलिस की गोली का शिकार हुई। नागालैंड मणिपुर क्षेत्र की रानी गाइंदिन्यू किशोरावस्था में ही अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातीय आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्हें लंबे समय तक कारावास भी झेलना पड़ा। सुन लेते हैं देशभक्ति के रंग में डूबा एक और गीत। गीत के उस पार रुक करेंगे पश्चिम भारत की वीरांगनाओं की चर्चा करेंगे।
1: देश

रंग में शामिल वीरांगनाएं आज की कार्यक्रम रसधारा का विषय। पश्चिम भारत की महिलाएं स्वतंत्रता आंदोलन में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए जानी जाती हैं, जिसमें शामिल है भीकाजी कामा। महाराष्ट्र ने विदेश में भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराकर विश्व समुदाय के सामने भारत की स्वतंत्रता की मांग रखी थी। महाराष्ट्र की उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो संचालित किया, जिसने स्वतंत्रता सेनानियों तक संदेश पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुजरात की कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी के साथ सत्याग्रह, स्वदेशी और महिला जागरण अभियानों में सक्रिय योगदान देकर अनेक बार जेल गईं। गुजरात की अनसुईया साराभाई ने श्रमिक अधिकारों और स्वदेशी आंदोलन को मजबूती दी तथा राष्ट्रीय चेतना फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाराष्ट्र की अवंतिका बाई गोखले ने महिला शिक्षा, स्वदेशी आंदोलन और गांधीवादी अभियानों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम को सामाजिक आधार प्रदान किया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वीरांगनाओं का संघर्ष केवल राजनीति स्वतंत्रता तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, आत्मनिर्भरता, सामाजिक समानता और राष्ट्रीय एकता का भी संदेश दिया। उन्होंने सिद्ध किया कि राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान महत्वपूर्ण है। उनके साहस ने लाखों भारतीय महिलाओं को घर की चौखट से निकालकर राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया। आज जब भारत स्वतंत्रता के अमृत काल की ओर अग्रसर है, तब इन वीरांगनाओं के त्याग, बलिदान और राष्ट्रभक्ति को स्मरण करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। उनके जीवन से हमें साहस, आत्मविश्वास, कर्तव्य निष्ठा और देश प्रेम की प्रेरणा मिलती है। भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास तब तक पूर्ण नहीं माना जा सकता जब तक वीरांगनाओं के योगदान को समान सम्मान और स्थान न दिया जाए। चलते चलते बस यही कहूंगी कि भारत की स्वतंत्रता असंख्य ज्ञात और अज्ञात वीरांगनाओं के संघर्ष, त्याग और बलिदान का परिणाम है। नारियों ने सिद्ध किया है कि जब मातृभूमि पुकारती है, तब नारी केवल परिवार की शक्ति नहीं बल्कि राष्ट्र की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति बन जाती है। उनके अदम्य साहस को शत शत नमन करते हुए आज के कार्यक्रम रसधारा से आज्ञा दीजिए अपनी दोस्त, अपनी होस्ट पूजा को। होगी आपसे मुलाकात एक बार फिर 12 बजे लेकर दैनिक पत्रिका कार्यक्रम सुरभि। चलते चलते छोड़े चलती हूँ आपको देश प्रेम से ओतप्रोत इस गीत के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारतीय ध्वज वाला वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नोरे ओलिया कल यमन तट के पास हमले के बाद लाल सागर में डूब गया। पोत पर सवार सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनमें 13 भारतीय थे।
1: भारतीय ध्वज वाला यह वाणिज्यिक पोत सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया, यमन के जल क्षेत्र के पास मिसाइल हमले के बाद पोत लाल सागर में डूब गया। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत इस अकारण हमले की कड़ी निंदा करता है और हमारे लोगों की सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की लगातार घटनाएं चिंताजनक है। मंत्रालय ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों की हिंसा ही वहां की वास्तविकता है। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषित करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। नीतिगत निर्णय मौजूदा भू राजनीतिक तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व पर दबाव के महत्वपूर्ण दौर में आ रहा है। आशा है कि आरबीआई प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेंगे। मेडिकल परामर्श समिति नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू करेगी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान आज से 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक होगा। हालांकि शुल्क भुगतान 12 अगस्त शाम 6 बजे तक किया जा सकता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि बदलती विश्व व्यवस्था में अविकसित देशों की आकांक्षाओं को आकार देने वाला बहुपक्षवाद समय की जरूरत है। डॉक्टर जयशंकर ने 17 देशों से आए संयुक्त राष्ट्र स्थायी प्रतिनिधियों से बातचीत की। ये प्रतिनिधि अध्ययन भ्रमण पर भारत आए हैं। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन प्रतिनिधियों के साथ प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा, शांति सुरक्षा, विकास साझेदारी और आपदा प्रबंधन को लेकर बातचीत हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को अवैध लेन देन के लिए किसी और के खातों का इस्तेमाल और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और जारी करने को कहा है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों से शिकायत निपटान मजबूत करने, धोखाधड़ी की गई धनराशि वापस लाने तथा डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने की प्रक्रिया में सुधार करने को कहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है।

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल है। आप ये प्रोग्राम न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन रहे हैं और साथ ही इंटरनेट पर डायरेक्टली सर्च करके भी सुन सकते हैं। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सुबह के 10:15:56 हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो इशारे है आपके मन पसंद प्रोग्राम अंजुमन का और साथ है एक बार फिर आपकी दोस्त तलत सलाहुद्दीन और आप सबो को मेरा प्यार भरा आदाब। एक ख्याल जहन में आ रहा है कि और एहसास होता है कि आपसे भी जरूर शेयर करूं कि मंजिलें कभी किसी के घर जाकर हाजिरी नहीं देती, रास्तों पर चलने से ही रास्ते निकलते हैं। या दोस्तों, ये एक खूबसूरत सोच के साथ आगाज करते हैं आज की सुबह का और देखते हैं कि आज के आईने में हमारे लिए क्या खास है। दोस्तों, ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जा रहा है। दूध पिलाने का आलमी हफ्ता यकुम अगस्त से 7 अगस्त तक शुरू रहता है, जिस पर हुकूमती पॉलिसी साजों, आलमी अदारों, सेहत WHO और यूनिसेफ के दस्तखत शुदा अगस्त 1990 की याद में ये दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के लिए 2026 का थीम है जिंदगी में एक पायदार आगाज के लिए ब्रेस्ट फीडिंग, जो काम करता है उसे मजबूत करें। पेशरफ्त को ट्रैक करने, असरात का जायजा लेने और साबित शुदा तरीकों की पैमाइश पर तवज्जो मरकोज करता है, जो दूध पिलाने के नतायज को बेहतर बनाते हैं। ये हुकूमतों, सेहत के निजाम, काम की जगहों, कम्युनिटीज, सिविल सोसाइटी की तंजीमों और खानदानों से कामयाब तजुर्बात पर इस्तवार करने और दूध पिलाने के लिए सपोर्ट के गर्म सिलसिले को मजबूत बनाने का मुतालबा करता है। दोस्तों, मुदाखलतें साबित है, मुआशी मुनाफे गैर मामूली, बाकी चैलेंज ये नहीं जानना कि क्या काम करना है, ये काफ़ी पैमाने पर सरमायाकारी कर रहा है। दूध पिलाना माँ का खुद, उसके बच्चे और ज़मीन के लिए तोहफा है। माँ का दूध मेरे ख्याल में शफकत की अलामत है। माँ के दूध के बगैर बच्चा जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए एक बच्चे के तौर पर हमारा पहला काम अपनी माँ के साथ मिलकर अपनी माँ का दूध फराहम कराना है, जिसमें बहुत कुर्बत का एहसास होता है। तो दोस्तों, ये था आज का आईना।

दोस्तों आप सुन रहे हैं अंजुमन साथ है तलत सलाहुद्दीन और आज दिन है बुध और आज के दिन हम आपके लिए बतौर खास कुछ हट कर लाते हैं। कुछ ऐसी चीजें ऐसी ख्वाहिशात जो हम सोचते तो जरूर है लेकिन कभी कभी ये हमारी तकमील से बाहर होती है या हमारी पहुंच से बाहर होती है। ऐसे ही एक हिस्से में आज के इस हिस्से में हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जिसने अपने ख्वाब को देखा और उसे पर लगाया और उड़ने की काबिल बनी। पेश है ख्वातिन की ख्वाहिश। ख्वातिन की ख्वाहिश में पेश है मैं माउंटेनियरिंग करना चाहती थी। दोस्तों ऊपर वाले ने हर इंसान को अपने आप में इनफरादी सलाहियतों के साथ पैदा किया है। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ खास सलाहियत होती है। कभी वो किसी खास काम में माहिर होता है तो दूसरा दूसरे काम में। लेकिन फर्क ये होता है कि हम अपनी सलाहियतों को समझने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो अपनी सलाहियतों को पहचान पाते हैं। कभी कभी एक लम्हा ही काफी होता है और कभी पूरी जिंदगी यूं ही गुजर जाती है और इंसान ये समझ ही नहीं पाता कि उसे क्या चीज सता रही है, किस चीज की कमी उसे लाहक है। ये समझते समझते पूरी जिंदगी ही खत्म हो जाती है। वो कसक उसे चैन से मरने नहीं देती। आप जानते हैं कि ख्वाब की कई किस्में होती हैं। कोई उड़ने का ख्वाब देखता है तो कोई आसमान छूने का ख्वाब, कोई वो चाहता है जो दूसरा कभी सोच भी ना पाए। ऐसा ही एक ख्वाब एक खातून ने देखा था।

ये ख्वाब राबिया का था। वो ख्वाब था आसमान की जानब तकती हुई पहाड़ की चोटियों को छूने का ख्वाब। असल में जब भी वो किताबों में पहाड़ों की तस्वीरें देखती तो उसे लगता कि वो तस्वीर उसे अपनी जानब खींच रही है। उसके नक्शे बार बार अपनी कॉपी में बनाती रहती थी। हमेशा ही उनकी ड्राइंग में एक घर होता और घर पहाड़ के उस पार होता। घर के छत से पहाड़ की चोटियां देखती थी। इन चोटियों की ऊंचाई का अंदाजा वो नहीं लगा सकती थी, लेकिन कभी ये स्केच से ऊंची हो जाती तो कभी ये छोटी हो जाती। यानी हाथ में पकड़े पेंसिल आड़े तिरछे लकीरों के साथ उसे ख्वाबों के पार जरूर ले जाते थे। उन्होंने बताया कि वो अपने स्कूल में टीचरों से पहाड़ों के मुतल्लिक जानकारियां लेती थी, कहानियां सुनती थी और मजे से घंटों उसके बारे में सोचती और ख्यालों में एक पैकर भी बनाती थी। जब क्लास में आगे बढ़ी तो मजमून का इंतखाब करना पड़ा तो ज्योग्राफी लिया ताकि पहाड़ों की जानकारी मिले। अक्सर छुट्टियों में भी अपने वालदैन को हिल स्टेशन जाने के लिए जिद करती थी, लेकिन ये जिद वालदैन को कभी समझ नहीं पाई। वालदैन ये सोचते कि ये उनका उसका शौक है, लेकिन वहाँ जाकर लोगों से मिलना, बात करना, उनकी लाइफस्टाइल को समझने में उसे बहुत मज़ा आता था। जब स्कूल मुकम्मल किया और वालदैन को कहा कि मैं करियर में मॉनिटरिंग को चुनना चाहती हूँ तो उनके वालदैन हैरान रह गए। उन्होंने कहा ये पेशा लड़कियों का नहीं है, क्योंकि लड़कियाँ कमज़ोर और अमूमन तौर पर नाजुक होती हैं। ये बहुत मुश्किल फील्ड है और पहाड़ों पर चढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं, इसमें जान का खतरा भी है। लेकिन वो बसीद रही, जान का खतरा लेने के लिए तैयार थी। वालिद ने बहुत समझाया फिर डांट कर चुप करा दिया। आइए सुनते हैं उन्हीं की जबानी उनकी कहानी।

बॉन्डिंग का शौक था। मुझे पहाड़ बहुत ही फैसिनेटिंग लगते थे और मैं हमेशा चाहती थी कि मैं पहाड़ों पर जाऊँ। हालांकि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा, क्योंकि जब मैंने अपने घर वालों को माउंटेनिंग के बारे में बताया तो उन्होंने फौरन मना कर दिया। उनका कहना था कि मैं पहाड़ पर चढ़ाई माउंटेनिंग ये सब लड़कियों के लिए नहीं है। घर वालों को मनाना मुश्किल हो रहा था मगर

0: चले गए। ये मेरी जिंदगी का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा।
1: उन्होंने कहा कि मेरे ख्वाब को वो खामोश नहीं करा पाए। मेरे वालदैन ने भले ही मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैं छुप छुप कर माउंटेनियन क्लब में अपना नाम लिखवा दिया और वहाँ मैं ट्रेनिंग भी लेनी शुरू कर दी। लेकिन उसके आगे का क्या, ये सवाल उसे हमेशा सताता रहा। जब उसे एक्सपेडिशन पर जाने का मौका मिला, हालांकि ये ज़्यादा खतरनाक नहीं था, एक ग्रुप के साथ जाना था, लेकिन इजाज़त लेने में उसके पसीने छूट गए। जब घर वालों को पता चला तो बहुत ज़्यादा डांट पड़ी और घर से बाहर निकलना बंद हो गया, लेकिन उसकी जिद अपनी जगह कायम रही। घर में खामोश एहतजाज उसकी जानिब से जारी रहा। आखिर वो दिन आया जब वालदैन उसकी जिद के आगे झुकने पर मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि ये जिद भले ही वालदैन को बुरी लगी, लेकिन मेरे ख्वाब को पर लगाने पर मदद किया।
0: मुझे माउंटेनियरिंग के दौरान बहुत कुछ मैंने सीखा और मैंने बहुत इंजॉय भी किया। और मैं बस ये कहूँगी कि अगर आपको शौक है, लगन है, तो आप अपने पीछे नहीं हटें, आप अपने शौक को पूरा कीजिए।
1: उसने कहा कि माउंटेनिंग के दौरान बहुत सारी कठिनाइयां सामने आई। जब भी मौसम खराब होता, हिम्मत जवाब देने लगती, सुजीत की वजह से मेरे अंदर तरोताजगी आ जाती और आखिर में ये ट्रैकिंग मैंने मुकम्मल कर लिया। लेकिन ये सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता है, इसके आगे भी उसका सफ़र जारी है और आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि ऐसी कई लड़कियां जो कई बार अपने ख्वाब देखती तो है, लेकिन इसे ना ही कहने का हिम्मत रखती है, ना ही इतनी सोच होती है, इतना हौसला होता है कि वो इस ख्वाब को पूरा कर सके। उन्होंने कहा कि अब ऐसे आप ख्वाब ज़रूर देखें और बेशक देखते रहें, लेकिन उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करें। तो दोस्तों, आप अभी समाज फरमा रहे थे ख्वातिन की ख्वाहिशों के तहत मैं माउंटेनियरिंग करना चाहती थी।

दोस्तों आज दिन है बुध और आज के दिन हम आपके लिए बतौर खास लाते हैं घर साज छेड़ा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ हम छेड़ेंगे साज और साथ में होगी कुछ हमारी और आपकी बातें। दोस्तों गुज़िश्ता कई दिनों से मौसम नहायत ही सुहाना हो रहा है। कभी काले बादल आसमान में छा रहे हैं, कभी हल्की फुल्की फुहार, कभी तेज मौसलाधार बारिश, तो कभी ठंडी हवाइयां। जी हाँ दोस्तों, ये मौसम की का इशारा है। जो गुजरे इश्क में सावन सुहाने याद आते हैं, जो गुजरे इश्क में सावन सुहाने याद आते हैं, तेरी जुल्फों को मुझको शामियाने याद आते हैं। दोस्तों इंसान की जिंदगी में मौसम का एहसास सबसे शदीद होता है। मौसम की कैफियत, उसका हुस्न और उसकी ताजगी और नयापन इंसान बखूबी महसूस करता है। कहीं ना कहीं हम सब इन बदलते मौसमों के गुलाम होते हैं। हर गुजरते दिन के साथ मौसम बदलने का भी इंतजार खूब रहता है। अगर ठंड आई तो बहार का इंतजार, बहार आई तो गर्मी का इंतजार, गर्मी आई तो बरसात का इंतजार, पतझड़ और ठंड, यानी पूरा साल ही इसी इंतजार में गुजरता है। लेकिन मौसम की अहमियत इंसान की कैफियत पर भी मुनहसर करती है। कभी कभी कोई खास मौसम किसी खास की याद

दिलाता है, कोई खास वारदात की याद ताज़ा कर देता है, और कभी कभी ये तकलीफ़दा तो कभी चेहरे पर मुस्कुराहट की वजह बन जाती है। ऐसा ही एक मौसम सावन का है। जी हाँ दोस्तों, सावन की आमद हो गई और ये वो मौसम है जिसे हमारे मुल्क में त्यौहार के तौर पर भी मनाया जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं महेंद्र कपूर और उनकी साथियों की आवाज़ में फिल्म बंधन से इंदिवर का कलाम, मौसिकी है कल्याण जी आनंद जी की।

जब चले जाएंगे हम लौट के सावन की तरह, याद आएंगे पर हम प्यार के चमन की तरह, जिक्र जिस दम भी छिड़ा उनकी गली में हमारा, जिक्र जिस दम भी छिड़ा इनकी गली में मेरा, जाने शर्माए वो क्यों गांव की दुल्हन की तरह, मेरे घर कोई खुशी आती तो कैसे आती, उम्र भर साथ रहा दर्द महाजन की तरह, कोई कंघी ना मिली जिससे सुलझ पाती वो, जिंदगी उलझी रही ब्रह्मा के दर्शन की तरह, दाग मुझ में है तुझ में बे पता तब होगा, मौत जब आएगी कपड़े लिए धोबन की तरह, हर किसी शख्स की किस्मत का यही है किस्सा, आए राजा की तरह जाए वो नर्धन की तरह, जिसमें इंसान के दिल की ना हो धड़कन नीरज, शायरी तो है और अखबार के कतरन की तरह। तो सो आस पास हरियाली हल्की फुल्की फवार, कभी कभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं।

और गर्ज के साथ मौसम का मिजाज बदलता। जमीन ऐसे बारिश की बूंदों को अपने अंदर समोती जैसे वो कब से प्यासी हो। फिर सावन बरस बरस कर पेड़ पौधों को अपनी खूबसूरती महसूस कराने में कामयाब हो जाता तो ये बूंदें फौरन ही बरसनी बंद हो जाती और ऐसा लगता कि कभी बरसा ही ना हो। जी हाँ, यही मजा है इस मौसम का। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में एक निहायत ही हसीन और प्यारा सा नगमा। फिल्म का नाम है फरार, मौसिकी है कल्याण जी आनंद जी की और इसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने।

दोस्तों आप सुन रहे हैं अंजुमन साथे तलत सलाहुद्दीन और मैं लाई हूँ कर साज छेड़ा, जहाँ हम बात कर रहे हैं सावन की। दोस्तों सावन और मोहब्बत का आपस में गहरा और पुराना रिश्ता है। ये मौसम बारिश, हरियाली और दिल की खूबसूरत जज्बों की अलामत है। बारिशों के मौसम में तुमको याद करने की आदतें पुरानी हैं। अब की बार सोचा है आदतें बदल डालें, फिर ख्याल आया कि आदतें बदलने से बारिशें नहीं रुकती। सुनते हैं एक नहायत ही हसीन रोमानी नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम चुपके चुपके, कलाम आनंद बख्शी और मौसीकी है SD बर्मन की। जी हाँ दोस्तों, कुछ नगमे ऐसे होते हैं जो लगता है कि किसी खास मौसम के लिए ही बने हैं। ऐसा ही ये नगमा है।

दोस्तों, सावन की खुशबू आते ही जमीन जैसे नई जिंदगी ओढ़ लेती है। तभी तो कई बुजुर्गों का कहना है कि सावन में लगाया गया पौधा नस्लों को साया देता है। अगर इस सावन में आप सिर्फ एक दरख्त लगाना चाहते हैं तो बेरी का दरख्त जरूर लगाएं। ये सिर्फ एक दरख्त नहीं, यहाँ पर कई यादें, परिंदों की पनाह और कुदरत का अनमोल तोहफा है। आज भी गांव में सावन के झूले जरूर लगते हैं। शादीशुदा औरतें अपने मायके सावन के झूले झूलने जाती हैं और हिंदू मजहब में ये त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। सावन बरसगीर का वो खूबसूरत मौसम है जिसका इंतजार हर साल शिद्दत से किया जाता है। ये सिर्फ बारिशों का नाम नहीं बल्कि उम्मीद, खुशी

खुशी, ठंडी हवाओं, सरसब्ज खेतों और फितरत की खूबसूरती का मौसम भी है। मगर सावन की एक हकीकत ये भी है कि इसकी बारिश हर जगह यकसा नहीं होती, कहीं मौसलाधार तो कहीं बूंदाबारी। कुछ लोगों के लिए ये मौसम एंजॉय करने का बहाना है, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए सावन एक तकलीफदा याद से कम नहीं होता। सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम मेरा गांव मेरा देश, और इस मौसीकी को लिखा है आनंद बख्शी ने, मौसीकी है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

सावन के गीत उठा रहे हैं तूफान दिलों में है, सावन के गीत उठा रहे हैं तूफान दिलों में है, परदेसियों की यादों से अरमा दिलों में है। सुनते हैं सुरेश वाटकर और अनुपमा देशपांडे की आवाज में फिल्म चांदनी से ये नगमा, कलाम आनंद बख्शी और मौसिकी है शिव हरी की।

दोस्तों, हर शायर सावन या बरसात का इस्तेहारा इजहार ज़ात के लिए नहायत खूबसूरत अंदाज में करता है। किसी के लिए गम, किसी के लिए जुदाई, किसी के लिए वसाल, किसी के लिए मायूसी, किसी के लिए आंसू, किसी के लिए हंसी की फुहार और किसी के यहाँ महबूब की जुल्फों की घटाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब आम जिंदगी में बरसात की इतनी अहमियत है तो शायरी में क्यों ना हो। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में फिल्म दामिनी से यह नगमा, कलाम समीर और मौसीकी नदीम शरवन की।

बिन साजन झूला झूलूं। तो संजुमन में वक्त हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन जाते जाते एक नहायती खूबसूरत शेर जहन में आ रहा है। ये रिम झिम ये बारिश ये आवारगी का मौसम, ये रिम झिम ये बारिश ये आवारगी का मौसम, हमारे बस में होता तेरे पास चले आते। तो संजुमन में वक्त हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, मैं तलत सलाहुद्दीन आज के लिए इजाजत लेती हूँ।

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल, जिसे आप अपने मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं, सुन रहे हैं। दिन के 12 बजे हम लेकर आते हैं आपके लिए पत्रिका कार्यक्रम सुरभि। सुरभि जो दो भागों में विभाजित होता है, पहला चर्चा है और अगली कड़ी पहल। चर्चा है के अंतर्गत आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 370 के निरसन की, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। भारतीय संविधान के उस ऐतिहासिक निर्णय को दर्शाता है जिसके तहत 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। यह निर्णय भारत सरकार द्वारा संसद में पारित प्रस्ताव और संबंधित संवैधानिक आदेशों के माध्यम से लागू किया गया। इसके साथ ही अनुच्छेद 35A भी प्रभावहीन हो गया। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कर उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया। इस निर्णय का उद्देश्य जम्मू कश्मीर को देश के अन्य राज्यों के समान संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत लाना, विकास योजनाओं का विस्तार करना, सुशासन को बढ़ावा देना तथा राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करना था। इसके बाद अनेक केंद्रीय कानून और कल्याणकारी योजनाएं वहां पूरी तरह से लागू की गईं तथा आधारभूत ढांचे जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और निवेश के क्षेत्र में नई पहल की शुरुआत की गई। हालांकि इस निर्णय पर विभिन्न राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों के अलग अलग मत रहे हैं, लेकिन समर्थकों ने इसे राष्ट्रीय एकता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना। सरल शब्दों में कहें तो अनुच्छेद 370 का निरसन भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। लंबे अरसे से विवादों में घिरे एक राज्य को मुक्ति के रूप में माना जाता है इस घटना को। चर्चा है यहीं तक। चर्चा है कि अंतर्गत आज हम बात कर रहे थे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, अनुच्छेद 370 के निरसन की। सुन लेते हैं SP बाला सुब्रमण्यम और KS चित्रा की आवाजों में कश्मीर की वादियों में फिल्माया गया, कश्मीर की वादियों को शब्दों में भावों में समेटे हुए रोजा फिल्म से इस गीत को।

आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। सुरभि का अगला पायदान पहल। पहल के अंतर्गत आज हम बात करेंगे वित्तीय समावेश की दिशा में ऐतिहासिक पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना की। मेरा खाता मेरा भाग्य विधाता। मेरा खाता मेरा भाग्य विधाता के मूल मंत्र के साथ शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी वित्तीय समावेशन योजनाओं में से एक है। इस योजना का उद्देश्य देश के प्रत्येक परिवार, विशेष तौर पर गरीब, ग्रामीण, वंचित और

असंगठित क्षेत्र के लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना है ताकि वे बचत, बीमा, पेंशन, ऋण तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी सुविधाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकें। प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह योजना भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत संचालित की जाती है। योजना के प्रारंभ के दिन ही करोड़ों बैंक खाते खोलकर इसने विश्व रिकॉर्ड बनाया और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में एक नई शुरुआत की। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना तथा आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, बचत की आदत को बढ़ावा देना है, सरकारी सब्सिडी और लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचे इसे सुनिश्चित करना है, गरीब और निम्न आय वर्ग को बीमा एवं पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना, नकदी आधारित अर्थव्यवस्था को कम कर डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करना, महिलाओं और ग्रामीण आबादी को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। बात करें अगर योजना की प्रमुख विशेषताओं की, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खुलने वाले खाते में कई ऐसी सुविधाएं हैं जो आम जन को लाभान्वित करती हैं, जैसे कि शून्य शेष जीरो बैलेंस पर खाता खोलने की सुविधा, डेबिट कार्ड की सुविधा, दुर्घटना बीमा कवर, पात्र खाता धारकों को जीवन बीमा का लाभ देना, खाते के संतोषजनक संचालन पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा देना, मोबाइल बैंकिंग एवं डिजिटल लेन देन की सुविधा, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे खाते में प्राप्त करना। आज प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत की वित्तीय व्यवस्था की मजबूत आधारशिला बन चुकी है। केंद्र सरकार की लगभग सभी प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, मनरेगा, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थियों के जनधन खाते में भेजी जाती है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी इस योजना की उपयोगिता स्पष्ट रूप से सामने आई। सरकार ने करोड़ों महिलाओं के जनधन खाते में सीधे आर्थिक सहायता भेजी, जिससे जरूरतमंद परिवारों को समय पर राहत मिली। डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत भी जनधन खाते, आधार और मोबाइल के माध्यम से डिजिटल भुगतान प्रणाली को मजबूत बना रहे हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने पिछले एक दशक में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। देश में 55 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों में 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा है। लगभग 2/3 खाते ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में हैं। खाता धारकों में महिलाओं की हिस्सेदारी 55% से अधिक है, जो महिला वित्तीय सशक्तिकरण का प्रमाण है। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज बड़ी संख्या में महिलाओं के स्वयं के बैंक खाते हैं, जिनमें सरकारी सहायता सीधे जमा होती है। इससे परिवार की आर्थिक पारदर्शिता बढ़ी है तथा महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता भी मजबूत हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मित्र, डाक बैंकिंग तथा डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के कारण दूर दराज के गांवों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंची हैं। अब ग्रामीण नागरिकों को छोटी छोटी बैंकिंग सेवाओं के लिए शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जनधन योजना ने डिजिटल भुगतान प्रणाली को गति दी। रुपे कार्ड, UPI आधारित भुगतान प्रणाली तथा मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से लोग सुरक्षित और सरल डिजिटल लेन देन कर रहे हैं। इससे नकदी पर निर्भरता काफी हद तक कम हुई है।
सरकार का लक्ष्य केवल बैंक खाते खोलना नहीं बल्कि प्रत्येक धारक को

बैंकिंग सेवाओं का नियमित उपयोग करने के लिए प्रेरित करना, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल भुगतान, सूक्ष्म बीमा पेंशन योजनाओं तथा छोटे ऋण की उपलब्धता बढ़ाकर इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाना है। आने वाले वर्षों में जनधन योजना भारत की समावेशी और डिजिटल अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पहल के अंतर्गत आज हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जनधन योजना की। कार्यक्रम से अभी अपने आखिरी मोड़ पर, आज्ञा दीजिए अपनी दोस्त अपनी होस्ट पूजा को दैनिक पत्रिका कार्यक्रम सुरभि से। चलते चलते छोड़े चलूंगी आपको श्रेया घोषाल की आवाज के साथ अगला कार्यक्रम इस गीत के उस पार। मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में

0: बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं, वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों तक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसीलिए भी विशेष है क्योंकि देश डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि हर नागरिक को बड़े सपने देखने, उन्हें साकार करने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का अवसर सुनिश्चित किया जाएगा। राज्यसभा में आज जम्मू कश्मीर से भाजपा सांसद सतपाल शर्मा ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना भारत की एकता और अखंडता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। संसद परिसर में हमारे संवाददाता से बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के प्रत्येक निवासी पर अब हर सरकारी योजना का लाभ पहुंच रहा है।
1: आज ही के दिन 2019 में 370 को निरस्त किया गया और हम सब जानते हैं कि जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को हटाया गया था। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग करने लगे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: वहीं सुबह 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। श्री गडकरी ने कहा कि देश में लगभग 22 लाख चालकों की कमी है। श्री गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश में हर वर्ष लगभग 1,80,000 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो जाती है। रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 5.25% पर बरकरार रखा है। मौद्रिक नीति समिति ने आज इस फैसले की घोषणा की। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि देश की आर्थिक वृद्धि को मजबूत मांग का समर्थन मिल रहा है और ये विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है।
3: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments, as well as the outlook, the MPC decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%.
0: श्री मल्होत्रा ने कहा कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा है। झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं, वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों तक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसीलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के प्रति डॉक्टर मुखर्जी का आजीवन समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद पिछले 7 वर्षों में जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है।
1: आज ही के दिन 2019 में 370 को निरस्त किया गया और हम सब जानते हैं कि जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
0: भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना और मजबूत हुई है और अब शासन राजनीतिक परिवारों के बजाय जनता द्वारा संचालित है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
2: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था, ऑनरिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370 वॉज एब्रोगेटेड। आर्टिकल 370 स्टार्टेड विद द वर्ड टेम्पररी बट नोबडी हैड द विल टू एब्रोगेट इट।
0: अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल बाद जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। सड़क, रेल और अन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है, संपर्क व्यवस्था बेहतर हुई है, सरकारी सेवाएं मजबूत हुई हैं और पर्यटन, निवेश तथा सुरक्षा की स्थिति में भी सुधार आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में इससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं।
3: अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास हुआ है। नई सुरंगें और सड़कों के चौड़ीकरण से जुड़ी परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित किया गया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जिसमें चिनाब और अंजीखड रेल पुल शामिल है, के पूरा होने से कश्मीर घाटी तक रेल संपर्क सुनिश्चित हुआ है। जेड मोड टनल ने सोनमर्ग तक हर मौसम में पहुंच सुनिश्चित की है, जबकि जोजिला सुरंग का काम पूरा होने वाला है और ये नीतिक रूप से महत्वपूर्ण श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर मौसम में पहुंच प्रदान करेगी। वर्ष 2024 में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 2,35,00,000 से अधिक रही, जिसमें 65,000 से अधिक विदेशी पर्यटक शामिल थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 से केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 18,000 करोड़ का निवेश हुआ है। 2,200 से अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं और 26 नए औद्योगिक ढांचे विकसित किए गए हैं। 41,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं और लगभग 9,81,000 स्वरोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। इन वर्षों में सुरक्षा की स्थिति में भी काफी सुधार देखने को मिला है। श्रीनगर से इशफाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा गया है।
4: After a detailed assessment of the evolving
3: परिवर्तनशील आर्थिक परिस्थितियों और भविष्य के अनुमानों के विस्तार से समीक्षा करने के बाद मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट 5.25 पर ही बरकरार रखने का निर्णय लिया है।
0: रेपो दर वो ब्याज दर है जिस पर RBI सरकारी प्रतिभूति

0: के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि मजबूत मांग के कारण देश में आर्थिक वृद्धि बनी हुई है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अपेक्षा से बेहतर रहा। बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई का अनुमान 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि हाल में महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि रही।
1: Headline inflation has edged up.
2: उम्मीद के मुताबिक मुद्रास्फीति आधार से थोड़ी ऊपर चली गई है। हालांकि पहली तिमाही में वास्तविक महंगाई दर अनुमान से थोड़ी कम रही। इससे पता चलता है कि लागत का दबाव कीमतों पर पूरी तरह से नहीं पड़ा है। महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह ईंधन और खाद्य वस्तुएं हैं। अब तक कीमतों के दबाव के हर तरफ फैलने के कोई खास संकेत नहीं मिले हैं। कीमती धातुओं को छोड़कर महंगाई दर पहले के अनुमान के मुताबिक ही नियंत्रण में है।
1: As projected earlier.
0: उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में बेहतर आर्थिक प्रदर्शन को देखते हुए आरबीआई ने वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है।
1: रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर दिस ईयर
2: मौजूदा वर्ष के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी का अनुमान अब 6.7% है। ये हमारे पिछले अनुमानों से 10 आधार अंक अधिक है। पहली तिमाही में 7%, दूसरी तिमाही में 6.4%, तीसरी तिमाही में 6.5% और चौथी तिमाही में 6.8%।
1: Q4 at 6.8%.
0: श्री मल्होत्रा ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से प्रमुख व्यापारिक मार्ग प्रभावित हो रहे हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बना हुआ है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि यदि सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार रहा तो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में प्लास्टिक के नोट चलन में आ जाएंगे। मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के नोट अधिक टिकाऊ होते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: सदन की कार्यवाही फिलहाल अभी जारी है। राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि देश में लगभग 22 लाख चालकों की कमी है। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मॉनसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की योजना की घोषणा की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विद्यार्थियों ने संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है।
4: राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों ने कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। छात्रों का कहना है कि उन्हें किसी का इस्तीफा नहीं बल्कि संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द कर राज्य के बाहर से हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों से न्यायिक जाँच चाहिए। छात्रों ने सीआईडी जाँच को नाकाफी बताया है। छात्रों के विधानसभा घेराव के ऐलान के बाद सीआईडी की कार्रवाई और तेज हो गई है। सीआईडी ने इस मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि युवा छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर प्रतिक्रिया देते समय अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए किसी भी प्रकार की हिंसक प्रतिक्रिया से स्थिति और बिगड़ जाएगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिका में दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा, जिसमें पत्थरबाजी के आरोप भी शामिल है, के लिए पार्टी की कथित जिम्मेदारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। लोकसभा ने आज बैंक

0: स्वीकार किया जा सकेगा। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उत्तरी कर्नाटक के यादगीर जिले के कडीचूर बडियाल औद्योगिक क्षेत्र में आज सुबह रासायनिक रिसाव के कारण 3 श्रमिकों के दम घुटने से मौत हो गई। रिसाव के संपर्क में आए 2 श्रमिकों को रायचूर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोपाल में तीसरे ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक शुरू हो गई है। अनेक देशों के प्रतिनिधि 4 दिन के इस विचार विमर्श में भाग लेने के लिए भोपाल पहुंचे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 107 अंक गिरकर 78,322 पर और निफ्टी 94 अंक फिसलकर 24,521 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और लद्दाख में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की आशंका है। उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में इस बार मॉनसून में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है।
1: उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित जिलों में बड़ी नदियों का जलस्तर घटने के साथ ही राहत और बहाली का काम युद्ध स्तर पर जारी है। हीराकुद बांध के 5 और स्लुइस गेट बंद कर दिए गए हैं, जिससे बाढ़ का पानी छोड़ने वालों गेटों की संख्या घटकर 8 रह गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि आज 13 जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। उड़ीसा में मौजूदा मानसून सीजन के दौरान सामान्य से 26% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और खेलों में भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गए हैं। वहीं पुरुष सिंगल्स में विश्व नंबर 1 किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, रौनक चौहान, सानिध दयानंद और थारून मन्नेपल्ली आज खेलेंगे। राष्ट्रपति भवन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान मिले 300 चुनिंदा उपहारों की आज से ऑनलाइन नीलामी शुरू कर दी है। ये नीलामी ई उपहार पोर्टल पर की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में GDP वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। कहा, मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: আকাশবাণী কলকাতা অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজে। এখন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠান, ভীম পলশ্রী রাগে খেয়াল, শিল্পী সোমা পান। শিল্পীকে তবলায় সহযোগিতা করেছেন চঞ্চল ভট্টাচার্য, হারমোনিয়ামে কমলাক্ষ মুখোপাধ্যায়। ভীম পলশ্রী রাগে খেয়াল।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के प्रति डॉक्टर मुखर्जी का समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
1: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था, ऑनरिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370 was abrogated. Article 370 started with the word temporary, but nobody had the will to abrogate it.
0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग प्रथाओं के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन की कार्यवाही में विपक्षी सदस्यों द्वारा लगातार हो रही बाधाओं पर चिंता व्यक्त की। श्री रिजिजू ने दावा किया कि विपक्ष संसद का संचालन नहीं होने देना चाहता और जानबूझकर बाधा उत्पन्न कर रहा है। राज्यसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और वापसी के लिए चर्चा शुरू कर दी है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में और संशोधन करके भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर

0: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। सरकार ने कहा है कि मुंबई देश में फिल्म, टेलीविजन प्रसारण, डिजिटल मीडिया और कंटेंट निर्माण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है और भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि मंत्रालय ने भारतीय सिनेमा, फिल्मों की विरासत और फिल्म सामग्री के प्रसार को प्रोत्साहन देने के लिए विकास, संचार और फिल्म सामग्री के प्रसार की केंद्रीय क्षेत्र योजना लागू की है। सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत कंपनी के पास मौजूद उस कुल सामान, माल या स्टॉक के आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात ढांचे का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। यह ढांचा भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के इस आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात को सुगम बनाने के लिए व्यापक नीति और प्रक्रियात्मक संरचना प्रदान करता है। इसमें कई सुरक्षा उपाय शामिल हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ई कॉमर्स निर्यात का लाभ भारतीय निर्माताओं तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मिले और साथ ही नियामक निगरानी भी बनी रहे। रिजर्व बैंक ने वर्तमान वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा गया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज ईशारानी बरुआ, तन्वी शर्मा, मानसी सिंह, रक्षिता श्रीरामराज, अश्मिता चालिहा और श्रेयांसी वलुशेट्टी ने महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। महिला डबल्स में सोनाली सिंह और रितिका ठाकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मिक्स डबल्स में श्रुति मिश्रा और ईशान भटनागर ने सात्विक रेड्डी कनापुरम और राधिका शर्मा को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Lok Sabha has passed the Bankers Books Evidence Bill 2026. When the House reassembled after the first adjournment at 2 p.m., Union Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the bill, which seeks to provide a law relating to evidence with respect to bankers' books and to align it with contemporary digital banking practices. The legislation was cleared by the Lok Sabha without any discussion amid continuous uproar by the opposition members over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET paper leak issue. Following the passage of the bill, the Lok Sabha was adjourned for the day. The Rajya Sabha has taken up the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 for consideration and return. The bill aims to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026. Lok Sabha has already passed the bill. Earlier in the day, the upper house also witnessed repeated disruption. Prime Minister Narendra Modi has said that lives of people of Jammu and Kashmir and Ladakh have witnessed wide-ranging transformation since the abrogation of Articles 370 and 35A 7 years ago. In a social media post, Mr. Modi reaffirmed the government's commitment to the progress of Jammu and Kashmir as well as Ladakh and to ensure that every citizen has the opportunity to dream big, achieve and contribute to the making of a Vikasit Bharat. Talking to Akashvani News at Parliament premises, Jammu and Kashmir BJP President and Rajya Sabha MP Satpal Sharma described the abrogation of Article 370 as a historic step towards the complete integration and development of Jammu and Kashmir.
2: It was on this day in 2019 that Article 370 was abrogated. We all know that Jammu and Kashmir is scaling new heights today. Due to this article, women from our region who married outside the state used to be deprived on their rights, including their property rights. Now that injustice has been ratified, communities such as Balmikis and Gurkhas have finally secured their due rights following the abrogation of Article 370.
1: India today advised Pakistan to stop the bloodshed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir and take credible, verifiable and irreversible action against terror networks.

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल है। आप इसे डिजिटल मोड पर भी सुन सकते हैं। फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उर्वशी पूनम के संग। उर्वशी के अंतर्गत दिव्या और दिव्या के अंतर्गत आज मैं बात करने वाली हूँ माया देवी के बारे में।

माया देवी यानी गौतम बुद्ध की माता। महारानी माया देवी बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध की जन्मदात्री माता थीं। वे कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी और उनका विवाह शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के साथ हुआ था। बौद्ध परंपरा के अनुसार रानी माया देवी अत्यंत सुंदर, दयालु, पवित्र, आचरण वाली और शिष्टाचार की प्रतीक थी। बातें और भी हैं, साझा करूंगी, लेकिन उससे पहले खूबसूरत नगमा आप सबके लिए। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

5:27। और आज उर्वशी के अंतर्गत दिव्या और दिव्या के अंतर्गत मैं बातें कर रही हूँ माया देवी के बारे में। पौराणिक कथाओं और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गर्भ धारण करने से पूर्व उन्होंने एक स्वप्न देखा था जिसमें एक श्वेत हाथी उनके गर्भ में प्रवेश करता है। इस स्वप्न का अर्थ विद्वान ज्योतिषियों ने ये निकाला कि उनकी संतान या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगी या फिर संन्यास ग्रहण कर जगत का उद्धार करने वाली एक महान आत्मा।

5:40। फिल्म जुबैदा से कविता कृष्णमूर्ति की खूबसूरत आवाज में धीमे धीमे गाऊं। गीतकार जावेद अख्तर और संगीतकार A.R. रहमान। और आज दिव्या के अंतर्गत बातें हो रही हैं माया देवी के बारे में, जो कि हैं गौतम बुद्ध की माता। संतान प्राप्ति के समय अपनी परंपरा के अनुसार वो अपने मायके देवदह जा रही थी। तभी मार्ग में लुम्बिनी नामक पवित्र उद्यान में उन्होंने एक बालक को जन्म दिया, और वो बालक भी कौन जो आगे चलकर भगवान गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। बातें और भी हैं, साझा करूंगी, लेकिन उससे पहले खूबसूरत नगमा आप सबके लिए। सुनते रहिए, साथ रहिए, और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

कुमार शानू की खूबसूरत आवाज में फिल्म जिंदगी है एक जुआ से आपने खूबसूरत सा नगमा सुना। और फिलहाल मैं दिव्या के अंतर्गत बातें कर रही हूं माया देवी के बारे में। गौतम बुद्ध के जन्म के मात्र 7 दिन बाद ही माया देवी का निधन हो गया। इसके पश्चात उनके छोटे बहन महाप्रजापति गौतमी ने सिद्धार्थ का लालन पालन किया और उन्हें माता का स्नेह दिया। बौद्ध इतिहास में रानी माया देवी को उनके त्याग और उस महान आत्मा को जन्म देने के लिए अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ याद किया जाता है। फिलहाल 5:50 और वक्त है एक खूबसूरत नगमे का। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए। और फिलहाल ये खूबसूरत नगमा आप सबके लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने सदन की कार्यवाही में विपक्षी सदस्यों द्वारा लगातार हो रही बाधाओं पर चिंता व्यक्त की। श्री रिजिजू ने दावा किया कि विपक्ष संसद का संचालन नहीं होने देना चाहता है और जानबूझकर बाधा उत्पन्न कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और अपने अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी है। तथाकथित यौम ए इस्तेहसाल यानी शोषण दिवस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र प्रदेश

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल है। आप इसे डिजिटल मोड पर भी सुन सकते हैं। फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिंदी वार्ता पूनम के संग। और आज हिंदी वार्ता के अंतर्गत मैं बात करने वाली हूं अनुच्छेद 370 के बाद जम्मू कश्मीर विकास और परिवर्तन की नई दिशा। 5 अगस्त 2019 भारत के आधुनिक इतिहास और जम्मू कश्मीर के राजनीतिक व सामाजिक परिदृश्य में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन सिद्ध हुआ। इस दिन भारत की संसद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 और 35 ए के विशेष प्रावधानों को समाप्त कर जम्मू कश्मीर को भारत संघ के साथ पूर्णतः एकीकृत कर दिया। इसके साथ ही राज्य का पुनर्गठन करते हुए इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित किया गया। दशकों से अलगाववाद, आतंकवाद, राजनीतिक अस्थिरता और विकास की धीमी गति से जूझ रहे इस क्षेत्र के लिए यह निर्णय केवल एक संवैधानिक संशोधन नहीं था, बल्कि यह सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि, सुशासन और शांति के एक नए युग का शुभारंभ था। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर ने सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और शासन व्यवस्था में ऐतिहासिक परिवर्तनों को देखा है। सबसे पहले बात आती है संवैधानिक एकीकरण और सामाजिक न्याय की। अनुच्छेद 370 के निरसन से पूर्व जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान और ध्वज था। कई केंद्रीय कानून जो भारत के अन्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते थे, इस क्षेत्र में लागू नहीं होते थे। 370 हटने के बाद सबसे बड़ा बदलाव सामाजिक न्याय और नागरिक अधिकारों के क्षेत्र में आया है। वंचित वर्गों का सशक्तिकरण, इसके विषय में यदि मैं बात करूं तो दशकों से जम्मू कश्मीर में रह रहे वेस्ट पाकिस्तानी शरणार्थी, वाल्मीकि समुदाय और गोरखा समाज को मताधिकार और स्थायी निवासी प्रमाण पत्र मिला।

इससे वे अब सरकारी नौकरियों, भूमि स्वामित्व और कल्याणकारी योजनाओं के पात्र बन गए हैं। भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिलने वाला आरक्षण जहां पूरी तरह लागू किया गया। पहली बार गुज्जर बकरवाल समुदाय को विधानसभा में राजनीतिक आरक्षण प्राप्त हुआ। अनुच्छेद 35 ए के तहत यदि कोई कश्मीरी महिला राज्य से बाहर के व्यक्ति से विवाह करती थी तो वह अपने पैतृक संपत्ति के अधिकार खो देती थी। इस भेदभावपूर्ण कानून के समाप्त होने से महिलाओं को संपत्ति और नागरिकता के समान अधिकार प्राप्त हुए हैं। जम्मू कश्मीर में पहली बार जिला विकास परिषद और प्रखंड विकास परिषद के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए। इससे लोकतंत्र की जड़ें धरातल तक पहुंची और स्थानीय नेताओं को विकास के निर्णय लेने का अधिकार मिला। आर्थिक क्रांति और औद्योगिक निवेश के यदि मैं बात करूं तो अनुच्छेद 370 के कारण बाहरी उद्योगपति जम्मू कश्मीर में भूमि नहीं खरीद सकते थे, जिससे यहाँ निजी निवेश 9 के बराबर था। इसके निरसन के बाद राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति लागू की, जिसने औद्योगिक क्रांति का आधार रखा। राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने के लिए 28,400 करोड़ की नई केंद्रीय क्षेत्र योजना की घोषणा की गई। इस नीति के तहत निवेशकों को प्रोत्साहन, जीएसटी में छूट और सुगम भूमि आवंटन की सुविधा दी गई। दुबई के एमआर समूह जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने श्रीनगर में मॉल और आईटी टावर लगाने में रुचि दिखाई। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रोसेसिंग, हस्तशिल्प और आईटी क्षेत्र की सैकड़ों कंपनियों ने निवेश के प्रस्ताव दिए। निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ने से स्थानीय युवाओं के लिए नौकरियों के नए द्वार खुले हैं, जिससे सरकारी नौकरियों पर निर्भरता कम हो रही है। पर्यटन क्षेत्र में नया स्वर्णिम अध्याय। यदि मैं इसके विषय में बात करूं तो जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले पर्यटन क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। शांति बहाल होने से घरेलू और विदेशी पर्यटकों का विश्वास पुनर्जीवित हुआ है। G20 पर्यटन बैठक का ऐतिहासिक आयोजन मई 2023 में श्रीनगर में G20 पर्यटन कार्य समूह की सफल बैठक आयोजित की गई। इस आयोजन ने वैश्विक स्तर पर यह संदेश दिया कि कश्मीर अब सुरक्षित, विकसित और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसे कश्मीर के हस्तशिल्प, पश्मीना, केसर और लकड़ी की नक्काशी को वैश्विक मंच मिला। बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी का विस्तार। पहाड़ी भूभाग के कारण जम्मू कश्मीर लंबे समय तक कठिन भौगोलिक परिस्थितियों से कटा रहा। अनुच्छेद 370 के बाद बुनियादी ढांचे के विकास को तीव्र गति दी गई है। रेलवे और सड़क नेटवर्क। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक की यहां मैं बात करना चाहूंगी। चिनाब नदी पर बना विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल और अंजी खड्ड पर बना भारत का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर के चमत्कार हैं। इसके पूर्ण होने से कश्मीर घाटी 12 महीने भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ी रहेगी। इसके अलावा जोजिला टनल, चेनानी नाशरी टनल और बानिहाल काजीगुंड टनल जैसी बड़ी परियोजनाओं से यात्रा का समय घंटों कम हो गया है। श्रीनगर और जम्मू को स्मार्ट सिटी योजना के तहत आधुनिक बनाया जा रहा है। अनुच्छेद 370 के समय कश्मीर घाटी में अलगाववादी हड़तालें, पथराव और आतंकवाद की घटनाएं सामान्य थीं। संवैधानिक बदलावों के बाद

0: खाद्य सुरक्षा परिदृश्य में व्यापक सुधार आया है। पत्थरबाजी पर विराम, सक्रिय आतंकवाद में गिरावट, सिनेमा हॉल और सांस्कृतिक गतिविधियों का बढ़ना। संवैधानिक बदलाव के बाद स्वास्थ्य सेवा और उच्च शिक्षा का तेजी से विस्तार हुआ है, ताकि स्थानीय युवाओं को पढ़ाई या इलाज के लिए राज्य से बाहर न जाना पड़े। आयुष्मान भारत योजना, जम्मू कश्मीर पहला ऐसा राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना जहां सेहत योजना के तहत सभी नागरिकों को बिना किसी आय सीमा के 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया। इसके अलावा शिक्षा में भी बहुत उन्नति हुई। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसा क्षेत्र बन गया है जहां IIT, IIM और AIIMS तीनों प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान मौजूद हैं। इसके अलावा कृषि, बागवानी और डिजिटल शासन में भी काफी उन्नति हुई है। धरती के स्वर कहे जाने वाले कश्मीर में अब गोलियों की जगह युवाओं के हाथों में लैपटॉप और खेल के उपकरण हैं। विकास की यह नई दिशा न केवल जम्मू कश्मीर को भारत के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में शामिल करेगी, बल्कि यह एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को पूरी तरह साकार करती है। हिंदी वार्ता में आज इतना ही।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। आदौ मुख्याः वार्ताः। सप्तत्युत्तर त्रिशत संवैधानिक नियमस्य निरसनानन्तरं कश्मीर लद्दाखयोः प्रजानां भाग्यं पूर्णतया नवदिशाम् अवाप्तवत् इति प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितम्। भारतीय रिजर्व बैंक संस्थया अस्मिन् वित्तीय वर्षे GDP वृद्धिः 6.7% यावत् अनुमितः। उदितं च यत् देशस्य आर्थिक विकासः सुदृढ याचनया समर्थितः अस्ति। सर्वोच्च न्यायालयस्य स्पष्टीकरणं यत् युव प्रदर्शनकारिणाम् उपरि कार्याचरणावधौ अधिकारिभिः संयमः परिपालनीयः। रांची नगरे JPSC JSSC परीक्षासु कथित अनियमिततां अधिकृत्य छात्र प्रतिरोधः तीव्रतरो जातः। असम मेघालय राज्ययोः अद्य अतिवृष्टि परा रक्तवर्णीया संचेतना प्रख्यापिता। बैडमिंटन स्पर्धायां आसान नगरे कोरिया ओपन प्रतियोगितायाः महिला एकल वर्गस्य द्वितीय चक्रे भारतीय क्रीडिकाः प्रविष्टवत्यः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यगादीत् यत् सप्तवर्षेभ्यः पूर्वं 70+300 अनुच्छेदः सहैव 35A इत्येतयोः निरसनेन जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्रयोः जनानां जीवने व्यापकं परिवर्तनं दृष्टम्। सामाजिक संचारपटलीय संदेशे श्रीमोदी प्राख्यात् यत् जम्मू कश्मीरस्य लद्दाखस्य च प्रगतये सर्वकारस्य संकल्पः पुनरावर्तितः। तेनोदीरितं यत् सर्वकारः एतत् दृढीकरिष्यति यत् विकसित भारतस्य निर्माणे सर्वे अपि स्वयोगदानं दातुम् अवसरान् लभेरन्। संसद परिसरे आकाशवाणी वार्ताहरैः सह सम्भाषमाणः जम्मू कश्मीरस्य भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य अध्यक्षः सेठ पाल शर्मा 70+300 अनुच्छेदस्य निरसनं जम्मू कश्मीरस्य विकासदिशि ऐतिहासिकं चरणम् इति प्रतिपादितवान्। भारतीय रिजर्व बैंक इत्यनेन अस्मिन् वित्तवर्षे देशस्य सकल स्वदेशीय उत्पादस्य विकासमानांकः 6.7% भविष्यति इति अनुमानितम्। संजय मल्होत्रा इत्यसौ अकथयत् यत् देशस्य आर्थिक विकासः निरन्तरं सुदृढ याचनया पुष्यते, सहैव भारतं विश्वस्य तीव्रतम वर्धमाना अर्थव्यवस्था वर्तते। सः 27 वित्तीय वर्षस्य कृते उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारितां मुद्रास्फीतिं पंच दशांश एक

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल है। आप इसे डिजिटल मोड पर भी सुन सकते हैं। फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुल गुलशन पूनम के संग।

गीतकार हैं प्रकाश मेहरा और संगीतकार हैं बप्पी लाहिरी, आवाज किशोर कुमार की और फिल्म का नाम नमक हलाल। फिलहाल अगली जो गजल है पंकज उधास की आवाज में बेहद खूबसूरत, फटाफट आप सब तक पहुंचाए देती हूँ। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज में खूबसूरत सी ये जो गजल आपने सुनी, मेघारे मेघारे। अब फिलहाल अगला नगमा बेहद खूबसूरत, सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज में दिखाई दिए यूं फिल्म बाजार से। अगला नगमा मुकेश और लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज में फिल्म मिलन से। और इसी के साथ पूनम को दीजिए थोड़ी देर के लिए आज्ञा, लौटकर फिर आऊंगी आप सबके लिए लेकर आऊंगी कार्यक्रम दर्पण। वक्त होगा 7:30, तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार।

0: करूं।
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर।
1: पवन करे शोर,
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर।
0: हाँ जिया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग प्रथाओं के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्य प्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और अपने अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी तथा कथित यौम इस्तेसाल यानी शोषण दिवस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इस सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मेटा, एक्सकॉप और गूगल LLC को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने श्री गडकरी द्वारा दायर मानहानि के दीवानी मुकदमे में अंतरिम राहत दी है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जाए।

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल है। आप इसे डिजिटल मोड पर भी सुन सकते हैं। फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दर्पण पूनम के संग। दर्पण के अंतर्गत एक नज़र, और एक नज़र के अंतर्गत फिलहाल मैं बात करने जा रही हूँ अनुच्छेद 370 का निरसन, एक ऐतिहासिक कदम। 5 अगस्त 2019 को भारतीय संसद ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए संविधान के अनुच्छेद 370 और 35 ए के अधिकांश प्रावधानों को समाप्त कर दिया, जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करते थे। इस ऐतिहासिक कदम के साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र को देश की मुख्यधारा से जोड़ना, आतंकवाद पर अंकुश लगाना और समानता के अधिकार को लागू करना था। इसके हटने से पूरे देश का संविधान, कानून और कल्याणकारी योजनाएं अब जम्मू कश्मीर में भी पूर्ण रूप से लागू हो गई हैं। इससे वहां के निवासियों, विशेषकर महिलाओं, बच्चों, शरणार्थियों और पिछड़े वर्गों को उनके वास्तविक अधिकार प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा इस कदम ने क्षेत्र में शांति बहाली, बुनियादी ढांचे के विकास, औद्योगिक निवेश और पर्यटन के नए द्वार खोले हैं, जिससे जम्मू कश्मीर विकास और समृद्धि के एक नए मार्ग पर अग्रसर है। 7:32 एक नजर के अंतर्गत फिलहाल इतना ही।

7:38। अरमान मलिक की खूबसूरत आवाज़ में फिल्म शैफ से आपने ये खूबसूरत सा नगमा सुना। फिलहाल वक्त है राही मतवाले का और आज इसके अंतर्गत मैं बात करने वाली हूँ माजुली द्वीप के बारे में, जो कि स्थित है असम में। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। ये अपनी अनूठी संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता, कला और शांत वातावरण के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ में घूमने की जगहों की यदि मैं बात करूं तो 17 वैष्णव मठ। माजुली को असमिया वैष्णव संस्कृति का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर कई प्राचीन 17 यानी कि मठ हैं, जहाँ भगवान विष्णु और

कृष्ण की पूजा होती है। माजुली पारंपरिक मुखौटे बनाने के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ कलाकार बांस, मिट्टी और कपड़े का उपयोग करके पौराणिक कथाओं के पात्रों जैसे कि रावण, हनुमान के सुंदर मुखौटे बनाते हैं। इसे देखना एक अनूठा अनुभव है। इसके अलावा मिसिंग ट्राइबल गांव, यहाँ की स्थानीय मिसिंग जनजाति के लोगों के रहन सहन और संस्कृति को करीब से देखने के लिए उनके गांवों की सैर की जा सकती है। माजुली में सालमोर नाम का एक ऐसा गांव है जहां आज भी प्राचीन पारंपरिक तरीकों से बिना चाक के हाथों से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। माजुली में कई आर्द्र भूमि है जहां सर्दियों के मौसम में बड़ी संख्या में दुर्लभ और प्रवासी पक्षी आते हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए ये जगह स्वर्ग से कम नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बैठकर यहाँ के खूबसूरत और शांत सूर्यास्त का नजारा देखना पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। माजुली की यात्रा करने के लिए अक्टूबर से अप्रैल का समय सबसे अच्छा और उपयुक्त माना जाता है। सर्दियों के मौसम में मौसम सुहाना रहता है, ठंडा रहता है, तापमान करीब 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और शुष्क रहता है। नवंबर के महीने में यहाँ प्रसिद्ध रास महोत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। गर्मियों का मौसम जो कि आता है मार्च से अप्रैल, इस दौरान मौसम हल्का गर्म होना शुरू होता है, लेकिन भीड़ भाड़ कम होने के कारण शांति प्रिय पर्यटकों के लिए ये समय भी अच्छा रहता है। मॉनसून के महीनों में यहाँ जाने से बचना चाहिए। भारी बारिश और ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण इस क्षेत्र में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है और नाव सेवाओं में भी बाधा आती है। तो आप अपने अनुरूप मौसम चुनें और उसके बाद माजुली द्वीप का आनंद उठाएं। फिलहाल 7:41 और वक्त है एक और खूबसूरत नगमे का। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

7:50। आयुष्मान खुराना की खूबसूरत आवाज में फिल्म विकी डोनर से आपने ये खूबसूरत सा नगमा सुना। फिलहाल फिल्म कुर्बान से ये खूबसूरत सा नगमा शुक्रान अल्लाह, सोनू निगम, श्रेया घोषाल और सलीम मर्चेंट की खूबसूरत आवाज में।

7:55 और अब पूनम के जाने का समय है एकदम करीब, तो आज के लिए दीजिए पूनम को आज्ञा। जाते जाते आप सभी के लिए खूबसूरत सा नगमा, और इसी के साथ आज्ञा दीजिए पूनम को। नमस्कार।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं निखिल कुमार।

0: संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास तथा सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा तथा अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया कि विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है।
2: सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए जजों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इस साल जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से अधिक मामले लंबित थे। वर्ष 2019 से सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 जजों की स्वीकृत संख्या पूरी होने के बावजूद केवल 65,000 से अधिक मामलों का ही निपटारा हो सका, जबकि पिछले साल अदालत में 75,000 से अधिक नए मामले आए। हर साल नए मामलों की संख्या निपटाए गए मामलों से अधिक होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या बढ़ने से मामलों का निपटारा तेज होगा और लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग का भी आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े जोखिमों से अवगत है। श्री वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित वैश्विक घटनाक्रमों और विकसित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय नियामक दृष्टिकोणों से अवगत रहती है। इसमें डिजिटल वातावरण में बच्चों की सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों की ओर से अपनाए गए उपाय भी शामिल हैं। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए केंद्र सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। मेटा को स्पष्ट कर दिया गया था कि वे मध्यवर्ती

0: की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं और वे ही तय करते हैं कि उनके मंच पर दी गई सामग्री किसे प्राप्त होगी। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा एक्स कॉर्प तथा गूगल LLC को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश ने आज अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को भी अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि दोनों अनुच्छेदों को निरस्त करने के बाद राज्य में बहुत विकास हुआ है।
1: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहाँ के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा तो नागरिक तो वहाँ खुश है।
0: जम्मू कश्मीर से राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।
2: जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी, उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
0: भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी। तथाकथित यौम ए इस्तेहसाल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार के 2 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले थे। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था को देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी लोग नाबालिगों को ISI द्वारा प्रशिक्षित किया गया था।
3: जो दूसरा मॉड्यूल है पेट्रोल बम फेंकने का और उनको बनाने का ट्रेनिंग दी गई ISI के जो हैंडलर्स हैं उनके द्वारा, और वहाँ उनको बताया गया कि आप पुलिस की एस्टेब्लिशमेंट या सिक्योरिटी एजेंसी की एस्टेब्लिशमेंट या किसी यूनिफॉर्म बंदे का टारगेट करने के लिए उनकी रेकी करो और आपको पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा था वहाँ भी ये जाके आए 8 लोग और वहाँ इनको लोकल एक सपोर्ट मुहैया करवाई।
0: झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मानसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की घोषणा की है। इस बीच भाजपा ने इन प्रदर्शनों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की चुप्पी की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि उन्होंने झारखंड का दौरा इसलिए नहीं किया क्योंकि कांग्रेस राज्य में सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। श्री पात्रा ने राहुल गांधी की आलोचना की है कि उन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मासूम बच्चों को संवाददाता सम्मेलन में घसीटा।
4: जो बच्चे आज राहुल जी के साथ थे उन्हें मैं बहुत प्यार से कहना चाहूंगा कि निडर रहना, बिल्कुल आप घबराना मत। हम विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो सकते हैं, हम सब पार्टीज हो सकते हैं, मगर आप हमारे हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, हम सब आपके साथ हैं। हम ऑपोजिशन की और राहुल गांधी की झूठी नैरेटिव यहां एक्सपोज करना चाहते हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: ये आकाशवाणी है। हैदराबाद में आज ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक संपन्न हुई। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में हुई दो दिन की बैठक का विषय था सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह ने कहा कि भारत की भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति का उल्लेख इस दौरान किया गया। उन्होंने कहा कि सत्यनिष्ठा, सुशासन और सतत विकास की नींव है। बैठक में ब्रिक्स के सदस्यों ने कानून प्रवर्तन विशेषज्ञों के ब्रिक्स नेटवर्क के लिए भारत के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की। यह नेटवर्क भ्रष्टाचार के मामलों में वांछित भगोड़ों का पता लगाने में सहायता करेगा और प्रत्यर्पण में सहयोग भी करेगा जो वर्तमान कानूनी प्रक्रियाओं का पूरक होगा। सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत कंपनी के पास मौजूद उस कुल सामान, माल या स्टॉक के आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात ढांचे का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। यह ढांचा भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के इस आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात पर सुगम बनाने के लिए व्यापक नीति और प्रक्रियात्मक संरचना प्रदान करता है। इसमें कई सुरक्षा उपाय शामिल हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ई कॉमर्स निर्यात का लाभ भारतीय निर्माताओं तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मिले और साथ ही नियामक निगरानी भी बनी रहे। सरकार ने कहा है कि मुंबई देश में फिल्म, टेलीविजन प्रसारण, डिजिटल मीडिया और कंटेंट निर्माण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। ये भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एलमुरुगन ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि मंत्रालय ने भारतीय सिनेमा, फिल्मों की विरासत और फिल्म सामग्री के प्रसार को प्रोत्साहन देने के लिए विकास, संचार तथा फिल्म सामग्री के प्रसार की केंद्रीय योजना लागू की है। केंद्र सरकार पत्रकार कल्याण योजना लागू करती है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि योजना के अंतर्गत सरकार ने 2014-15 से 2025-26 तक 456 मीडिया कर्मियों या उनके परिवारों को 19 करोड़ 41 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% तक रखा गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 152 अंक बढ़कर 78,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में मामूली 10 अंकों की बढ़त हुई और ये 24,625 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 25 पैसे मजबूत होकर एक अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.13 रुपए पर बंद हुआ।
0: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इन खिलाड़ियों में ईशरानी बरुआ, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालिया और श्रियांशी वली शेट्टी भी शामिल हैं। वहीं महिला डबल्स में सोनाली सिंह और रितिका ठक्कर तथा मिक्स्ड डबल्स में श्रुति मिश्रा और ईशान भटनागर ने अंतिम 16 में जगह बना ली है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, गंगा के मैदानी पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास और सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Parliament passes bill increasing the strength of Supreme Court judges to 37. Lok Sabha clears legislation giving legal recognition

0: सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: जरा कल्पना कीजिए, एक पिता ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए वर्षों तक पैसे जोड़े, एक बुजुर्ग दंपत्ति ने अपनी पूरी जिंदगी की बचत बैंक में सुरक्षित समझ कर रखी, एक युवा ने अपनी पहली नौकरी की पहली तनख्वाह खाते में आते ही अपने सपनों की शुरुआत।

0: फोन कॉल, सिर्फ एक क्लिक और कुछ ही सेकेंड में सपने भी गायब और बैंक बैलेंस भी। आज अपराधी आपके घर का ताला नहीं तोड़ते, वे आपके भरोसे को तोड़ते हैं। वे आपकी जेब नहीं काटते, वे आपकी पहचान, आपका बैंक खाता और आपकी मेहनत की कमाई चुरा लेते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस पूरे खेल में इस्तेमाल होने वाला सबसे बड़ा हथियार कोई हाईटेक वायरस नहीं है, उस तिजोरी का नाम है म्यूल अकाउंट्स, यानी वो कठपुतली बैंक खाते जिन्हें कभी बेकसूर लोगों के भोलेपन का फायदा उठाकर तो कभी चंद रुपयों के लालच में किराए पर लेकर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब इस काले कारोबार पर नकेल कसने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत उच्चतम न्यायालय ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक SOP बनाने का निर्देश दिया है जो इन म्यूल अकाउंट सहित साइबर फ्रॉड को रोकने में कारगर साबित हो। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि SOP कैसी होगी, सवाल ये है कि क्या हम अनजाने में किसी साइबर गैंग का हिस्सा तो नहीं बन रहे? क्या सिर्फ एक गलती हमारी पूरी जिंदगी की कमाई छीन सकती है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे आज के कार्यक्रम में। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो बेहद खास मेहमान, अर्थशास्त्री और वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ शरद कोहली और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी कुमार राणा जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आनंद, आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन।
2: जी नमस्कार
0: शरद जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं और सबसे पहला प्रश्न जो यही होगा कि म्यूल अकाउंट्स, बहुत सारे लोग जो आकाशवाणी से जुड़े हैं और ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये शब्द पहली बार हो, आप बहुत ही व्यवहारिक बोलचाल की भाषा में अगर लोगों को समझा पाएं कि म्यूल अकाउंट्स होते क्या क्या हैं।
1: आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं म्यूल अकाउंट क्या होता है। देखिए, म्यूल अकाउंट जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, जो व्यक्ति गलत इंटेंशन से पैसे किसी से वसूलना चाहता है, किसी को फ्रॉड द्वारा किसी से पैसे लेना चाहता है, कोई गलत जानकारी दे के पैसे लेना चाहता है, तो होता क्या है कि जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक में तो पूरा KYC किया जाता है। बैंक में आप कौन है, आपका आधार, आपका पैन नंबर, आपका एड्रेस वगैरह बैंक में सब रिकॉर्डेड होता है। तो यदि वो क्रिमिनल अपने नाम से बैंक अकाउंट खुलवाता है तो लाजमी बात है उसका तो पकड़ा जाना लगभग तय हो जाता है। तो ऐसे में ये शातिर दिमाग क्या करते हैं कि ये किसी भोले भाले व्यक्ति का, किसी दूसरे व्यक्ति को, उसको कुछ पैसे का लालच देकर, उसको और लालच देके उसके अकाउंट का प्रयोग करते हैं किसी व्यक्ति से गलत तरीके से पैसे वसूल करने में। यानी कि म्यूल अकाउंट का मतलब है अपने अकाउंट में पैसे ना लेके किसी भोले भाले इनोसेंट व्यक्ति को, जिसको ज्यादा जानकारी नहीं है, जो बैंकिंग के बारे में ज्यादा, आपको पता ही है जनधन खाता खोलने के बाद देश में तो ज्यादातर लोगों के अब बैंक अकाउंट है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैंकिंग के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। किसी ने जाके कहा कि भाई आप अपना ऐसा करो, मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे आएंगे और उसके बदले में कुछ उसकी परसेंटेज आप रख लेना। तो आप अनजाने में किसी साइबर क्रिमिनलियों की फ्रॉड करना चाहता है उसके एक तरह से पार्टनर बन जाते हैं। और ज्यादातर लोग जो मैंने इसमें आनंद देखे हैं, वो लोग बिल्कुल ही इनोसेंट होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता। बाद में जब उनके सामने सारा कुछ आता है, उनका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, FIR हो जाती है, पुलिस तहकीकात करती है, साइबर डिपार्टमेंट तहकीकात करता है, तब पता लगता है ये तो हम किसी गलत चक्कर में फंस गए। तो म्यूल अकाउंट का मतलब है कि अकाउंट आपका पर करतूत किसी और की, और नाम आपका आगे आएगा, अगर हम इसको सरल शब्दों में कहें।
0: जी हाँ बिल्कुल। अश्विनी जी, आपसे समझना चाहेंगे कि आज के समय में डिजिटल अरेस्ट, पार्ट टाइम जॉब स्कैम और फर्जी ट्रेडिंग ऐप जैसे कई तरीकों से आम लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि साइबर फ्रॉड से देश को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अगर हम देखें तो ये किस तरह का खतरा है कि उच्चतम न्यायालय को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश देना पड़ा?
2: जिस प्रकार से मैंने वो स्टडी किया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को कहा है SOP बनाने के लिए, बिल्कुल अच्छी बात है। और उसके लिए आपकी जानकारी के लिए रिजर्व बैंक ने एक AI टूल भी जनरेट किया है म्यूल हंटर के नाम से, और उसने कुछ काम करना शुरू किया है म्यूल अकाउंट को डिटेक्ट करना, उसमें क्या ट्रांजेक्शन्स किसी ऐसे खाते में जिसमें बैलेंस नहीं है, बड़ा कुछ बैलेंस आ रहा है, उस तरह का शुरुआत किया है। लेकिन और भी जरूरत है, और उसमें मुझे लगता है SOP बनाने के साथ साथ बैंकों में जो खाते खोलने का जो सिस्टम है उसका ड्यू डिलिजेंस भी बहुत जबरदस्त करना पड़ेगा, क्योंकि अभी खाते जो है वो कैसे भी खुल जाते हैं, जब ऐसे खुलते हैं तो वो आगे बिक जाते हैं। कोहली साहब ने भी ठीक कहा कि म्यूल अकाउंट वही है, और खाता खोलने के लिए आपको एक सिम चाहिए, और सिम भी आपको सड़क पर फर्जी आपके डॉक्यूमेंट के साथ मिल जाता है। तो इससे ये दोनों अगर चीजें जो है हो जाए तो इससे कंट्रोल हो सकता है। और जहां तक डिजिटल अरेस्ट की बात है तो उसके लिए हम बैंकों को सीधा सीधा नहीं जिम्मेवार ठहरा सकते, क्योंकि व्यक्ति खुद ही अगर कोई उसमें फंस गया है और तैयार हो, और आजकल तो बैंक इंप्लाइज को भी बैंक इतना ट्रेन कर रहा है कि कोई आदमी आता है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मनी निकाल रहा है या कोई टेंशन में है तो उसको जो है काउंसलिंग की जाती है, और ऐसे बहुत सारे केस बैंकों ने बचाए हैं। तो बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि इस तरह का जो फ्रॉड है और जो लोगों का पैसा है

0: उसको सुरक्षित रखना बैंकों की जिम्मेवारी है, और उसके लिए बैंक का जो है और आगे टेक्नोलॉजी वाइज जो है अपग्रेड हो, ये बहुत जरूरत है।
1: शरद जी, जो लोग ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग साइबर ठगी का कभी ना कभी शिकार भी हुए होंगे। जो लोग इससे सतर्क होना चाहते हैं, सजग होना चाहते हैं, सरकार ने 1930 का एक पोर्टल भी बनाया है जहां पर आप जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, और कहते हैं कि अगर आपके साथ साइबर ठगी हुई है तो शुरुआती घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ताकि बैंक उस खाते को फ्रीज कर सके, यानी आपके पैसे आगे बढ़ने से रुक सके। शुरुआती पहल क्या करनी चाहिए एक नागरिक जो ये कार्यक्रम सुन रहा है, साइबर ठगी अगर उसके साथ हो गई उस समय उसको शुरुआती घंटों में किस तरह के सुरक्षात्मक उपाय उठाने चाहिए?
2: सबसे पहले तो इसमें आनंद यह है कि पहले कोशिश तो ये करें कि आप इस साइबर ठगी का शिकार ही ना हो। तो अब बहुत सारे लोग जो शिकार हुए हैं उन सब से आप बात करेंगे, मैंने कुछ लोगों से बात करी पीछे, मुझे निरंतर मिलते रहते हैं, उनका ये कहना है कि भाई उस समय तो हमें पता नहीं होता, अगर हमें उस समय पता होता तो हम शायद कोई पैसा ना ट्रांसफर करते, या जिसको डिजिटल अरेस्ट कहते हैं, घंटों तक आप स्क्रीन के आगे आपको बैठाए रखा जाता है, आपको ब्लैकमेल किया जाता है कि आपकी फोटो हम उस पर डाल देंगे, हम AI से ये करके, दुनिया भर की धमकियां उसमें दी जाती है। अब अगर आप शिकार हो ही चुके हैं तो इसमें मुझे लग रहा है कि लोग क्या होता है शिकार होने के बाद, एक अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेट ऑफ शॉक, कि आप ऐसे अचंभे में पड़ जाते हैं जैसे ही आपको पता लगता है। तो पहले तो आपको पता लगना चाहिए कि आप शिकार हो चुके हैं, तो जैसे ही पता लगे फौरन आपको, जैसे आपने नंबर दिया है 1930, वहां पर आप कॉल करें, कॉल करके सारा मामला बताएं, आपसे पूछा जाएगा, नहीं तो जो नियरेस्ट आपके कोई साइबर पुलिस स्टेशन है, नहीं तो आप एक साधारण पुलिस स्टेशन में भी जाएंगे तो वहां पर पुलिस वाले आपकी मदद करते हैं। हर राज्य में, हर केंद्र शासित प्रदेश में एक साइबर का पुलिस का सेल है, और ये जरूरी नहीं कि जिस शहर में, जिस गांव में आप हो वहां पर ये सेल हो, ये तो जरूरी नहीं है, परंतु सभी पुलिस स्टेशन को हिदायत दी गई है कि आपके पास अगर कोई साइबर ठगी का कोई विक्टिम आता है, कोई व्यक्ति जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो आता है, तो आप तुरंत उस पुलिस स्टेशन के पास, वहां का नंबर होता है, आप उससे संपर्क कराएं। बहुत जल्दी एक्ट करना, आपने बड़ी अच्छी बात करी कि बहुत जल्दी एक्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसे जो शातिर दिमाग होते हैं, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं, वो मल्टीपल अकाउंट्स को यूज करते हैं, यानी बहुत सारे अकाउंट्स के संपर्क में रहते हैं, और ये पैसा एक जगह पहुंच के उसके बाद अमूमन ऐसा देखा गया है कि कई अकाउंट्स में जाके बट जाता है, उसको लॉन्डर कर दिया जाता है पैसे को, जिससे कि अगर एक अकाउंट फ्रीज भी हो, एक अकाउंट पकड़ा भी जाए, तो आप दूसरे अकाउंट तक हम पहुंच जाए, तीसरे अकाउंट पर। तो इसलिए अगर आप जल्दी नहीं एक्ट करेंगे तो तब तक पैसे के लिए बाद में साइबर सेल को, पुलिस को उस पैसे को वापस लाने में, उस पैसे को रिकवर करने में और भी ज्यादा कठिनाई आएगी, क्योंकि जितने ज्यादा अकाउंट्स होंगे उतनी ज्यादा कठिनाई आएगी, उतना ही ज्यादा समय भी लगेगा, और मैं ये भी बता दूं साथ में चांसेस भी फिर कम हो जाते हैं इस पैसे के रिकवरने के। इसलिए अगर आप देखें कि कोर्ट ने जो आनंद जो SOP जारी किया है, उस SOP में क्या क्या चीज है, आप देखिए अगर SOP को देखेंगे तो आपके सवाल का पार्टली यहां से भी जवाब निकल जाता है। पहले सब केंद्र शासित प्रदेशों को, राज्यों को कहा गया है कि आप एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल बना दीजिए। भाई वो तो साइबर में होता है, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि हर पुलिस स्टेशन को निर्देश दिए जाएंगे, अगर आपके यहाँ साइबर नहीं भी है तो आप जैसे ही आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आए आप उसको साइबर सेल से कनेक्ट कर दीजिए। दूसरा, फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज क्या करते हैं, कई बार कंप्लेंट नहीं लिखते, उनको कहा गया है कि आप इस कंप्लेंट को लिखेंगे भी, FIR भी करेंगे, और आप जल्द से जल्द उसका निस्तारण करने की भी चेष्टा करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि जी ये तो आप साइबर सेल के पास जाइए, आप ये तो हमारा थाना इसको देखता नहीं है, वगैरह वगैरह। दूसरा, इसमें देखिए आनंद समझना होगा कि इसमें बैंकों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पैसा किस माध्यम से गया, UPI से गया या किसी और ऐप के थ्रू गया, गया तो बैंक के माध्यम से, पैसा तो बैंक के माध्यम से, जब भी आप पेमेंट इंटरफेस यूज करेंगे तो बैंकिंग चैनल तो उसमें चाहिए चाहिए। तो बैंक्स को भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक के थ्रू निर्देश दिए हैं कि बैंक भी पूरा कोऑपरेट करें, क्योंकि ऐसे में बैंक क्या कहता है, जी हमें क्या पता, तो आपने ट्रांजैक्शन किया होगा, आपने एक देने वाला कोई, लेने वाला कोई, तो जब ऐसा कोई कस्टमर बैंक का आ रहा है बैंक के पास तो बैंक को भी उसको पूरा ध्यान देना। दूसरा, देखिए मामला कहां जाता है, अगर राज्यों की हम बात करें, अब सुप्रीम कोर्ट तो सारा देखेगा नहीं, हर राज्य में हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट्स को साथ में बोला गया है कि आप जो लोअर लेवल के कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशंस कोर्ट है, उसमें आप पूरा सहयोग करें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को, उनको पूरे मैकेनिज्म के बारे में बताएं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसको हाई कोर्ट्स को भेजेगा, हाई कोर्ट्स आगे लोअर कोर्ट्स इसको हम बोलते हैं, उनको निर्देश देंगे कि इन मामलों को किस तरीके से जल्द निस्तारण करना है। उसके बाद स्टेट वाइज और बैंक वाइज, ये भी कहा गया आनंद के, स्टेट वाइज बैंक वाइज रिपोर्ट्स निकाली जाए बकायदा, जो कि कंप्लेंट को पूरी तरह से कम समय में सर्कुलेट कर दे, और इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी जो कि बैंक को कंसल्ट करती है उसको भी एक्टिवेट किया गया, जिससे जो बीच में जो इंटरमीडिएट, क्योंकि देखिए होता क्या है, जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं और जो लोग इसके पीड़ित हैं उन्होंने एक शिकायत करी कि जी हमें एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, वो कहता है बैंक करेगा, बैंक कहता है नहीं इंटरमीडियरी करेगी, इंटरमीडियरी कहता है ऐप वाला करेगा, ऐप वाला कहता है पुलिस स्टेशन।

0: करेगा। तो ये जो लंबी चेन है इन सबकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति एक फेसलेस क्रिमिनल है आपके सामने, आपको उसका चेहरा नहीं मालूम है। तो आपको जब तक सारे के सारे विभाग एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में संयुक्त तरीके से काम नहीं करेंगे, यूनिफाइड तरीके से काम नहीं करेंगे, तो ये इस क्रिमिनल को पकड़ा नहीं जा सकता। तो ये एसओपी जो मैंने बताया, इस एसओपी के अंतर्गत एक स्कीम बनाई गई है, एक मुहिम लाई गई है कि चौतरफा उसको घेरा जाए कि ऐसा व्यक्ति बच के निकल ना पाए। आनंद
1: जी, अश्विनी जी आपसे थोड़ा ये समझने की कोशिश करेंगे, शरद जी भी अपनी बात में उसका चर्चा कर रहे थे, जो 14C पोर्टल है या फिर E0FIR है और न्यू मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल की जो चर्चा हो रही है, उससे पीड़ितों को कितनी तेजी से रिफंड मिल सकेगा?
2: देखिए क्या है कि अभी ये मिलना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन निश्चित रूप से अभी जो भी उसका जो सिस्टम है, ढांचा है, वो बहुत अच्छा नहीं है हम कह सकते हैं। कारण क्या है कि साइबर थानों में जो लोग डिप्यूटेड हैं, वो उस तरह से उन चीजों को निपटने के लिए उतने एक्सपर्टाइज नहीं है और वो उस तरह से व्यवहार भी नहीं करते, लेकिन अब वो कहा गया है तो वो बिल्कुल होना चाहिए। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि जो रिजर्व बैंक एक एफर्ट्स कर रहा था वो अभी तक हो जाए तो इसमें और लोगों को लाभ मिल सकता है, कि जो एक डिले, एक घंटे के डिले पेमेंट जो है का जो प्रस्ताव रिजर्व बैंक का था कि अगर 10,000 से ज्यादा की पेमेंट यूपीआई से हो रही है तो वो आप एक घंटे के बाद जो है वो ऑपरेटिव हो, मतलब आपने पैसा डाल दिया लेकिन वो एक घंटे के बाद उसके बीच में कभी आप रोक सकते हैं। तो बड़े अमाउंट के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए अगर इस प्रकार का जो सिस्टम आ जाता है तो उससे जो एक आदमी फंस गया है और उसको मुश्किल में और उसको समझ आता है तो वो उसको रोक सकता है। तो इसलिए अभी रिजर्व बैंक भी अपने तरीके से काम कर रहा है, लेकिन क्या होता ना कि सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे सकता है, लेकिन नीचे धरातल पर उतरने के लिए निश्चित रूप से बैंकों को, एक्सपर्ट्स को, रिजर्व बैंक को, इन सबको जो है मिलके, और साइबर एक्सपर्ट्स जो लोग हैं वो थानों में भी, वैसी पुलिस, ताकि और उसके कारण से ये निपटारा, नहीं तो हम नई नई चीजें, 1930 है, आप फोन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से वहां पर रिप्लाई मिला है, वह ऑल इंडिया एक लाइन है, लेकिन कई बार देखने में आता है कि वहां पर रिस्पॉन्स जो है, जो वहां पुलिस है उसका उतना लोगों को नहीं होता, तो लोग एकदम से हो जाते हैं। और उसके साथ साथ लोग अगर 1930 के साथ साथ अपने बैंक को भी इमीडिएट कॉन्टेक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो वहां पर भी अपनी ट्रांजेक्शन को फर्दर वो रोक सकते हैं, और बैंक अगर कोशिश करता है तो जहां वो पैसा गया है उसको भी आगे रोका जा सकता है। ऐसा सिस्टम डेवलप होना चाहिए, अभी वो है, लेकिन और फास्ट वो अगर होता है तो लोगों को उसका लाभ हो सकता है।
1: शरद जी, साइबर फ्रॉड का पैसा केवल भारत के भीतर नहीं घूमता जैसा आप भी बता रहे थे, बल्कि ये म्यूल अकाउंट से होते हुए क्रिप्टो करेंसी, पीयर टू पीयर एक्सचेंजेस और हवाला नेटवर्क के जरिए साउथ ईस्ट एशिया या फिर यूरोप के कई देशों में डाइवर्ट कर दिया जाता है। एक अर्थशास्त्री के नाते भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI के भरोसे पर इस इंटरनेशनल मनी ट्रेल और कैपिटल ड्रेन का क्या आप दूरगामी आर्थिक प्रभाव देख रहे हैं?
0: देखिए, आपने जो बात कही पहले उसमें हमें समझना होगा कि भारत में अगर रुपए में पैसा आपका कनेक्ट हुआ है तो उसको अगर आपको विदेश भेजना है तो अनटिल एंड अनलेस कि उस देश के साथ हम रुपी और उसकी करेंसी में एक एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो आप रुपी में तो भेज नहीं पाएंगे उसको। ये जनरली जो आप कह रहे हैं वहां होता है जहां पर आपका कोई क्रिमिनल विदेशी है या आपसे विदेशी मुद्रा में कह रहा है कि आप डॉलर में पेमेंट कर दीजिए। उसके लिए डॉलर किसी आम आदमी को या कोई और करेंसी, किसी आम आदमी को यूरो है, पाउंड है, किसी आम आदमी के लिए ऐसे आसानी से लेना संभव नहीं है। उसके लिए बैंक में एक A2 फॉर्म होता है, आपको पर्पस बताना होता है आप डॉलर क्यों इशू कराना चाहते हैं। और मैं जो जिस पे ज्यादा प्रकाश डालना चाह रहा था आनंद आपकी इजाजत से, वो था कि अभी मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी और कुछ लोग जो इसका शिकार हुए थे, जिनको दिक्कतें आई, जो पीछे शिकार हुए हैं, उन्होंने 3-4 कॉमन जो समस्याएं निकल के आई जिसकी वजह से मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा। सबसे पहली समस्या थी कि जब पुलिस स्टेशन जाके आप FIR कराते हैं, जहां हम जल्दी करने की बात कर रहे हैं, तो FIR करने में डिले होती है, जिसके बारे में मैंने अभी हल्का सा जिक्र भी किया। दूसरा होता है कि जैसे ही पता लगता है, और मान लीजिए पता लग गया कि किस अकाउंट में पैसे गए हैं, तो तुरंत निर्देश दिए जाने चाहिए उस अकाउंट को फ्रीज करने के। अब ये तो म्यूल अकाउंट है, यानी कि ये अकाउंट तो किसी दूसरे व्यक्ति का है। अब उस व्यक्ति का, उसने किसी और के लिए ये काम किया, यानी किसी और को अपने अकाउंट को बेच दिया या अपने अकाउंट को किराए पे दे दिया या किसी लालच में आके किया, तो उस व्यक्ति का अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अब उस व्यक्ति ने तो फ्रॉड किया नहीं है, वो तो शिकार हुआ है लालच का या शिकार हुआ है किसी और के चक्कर में। तो अब इसमें क्या है कि आपको जो कोऑर्डिनेशन है बैंक और पुलिस स्टेशन के बीच में, वो मुझे लगता है बहुत सुदृढ़ करने की जरूरत है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन की कमी होने की

0: वजह से पुलिस के इंस्ट्रक्शन आएंगे, बैंक तब फ्रीज करेगा, बिना उसके तो फ्रीज करेगा नहीं बैंक। तो इसमें स्पीड स्पीड करने की जरूरत है। दूसरा, एक दफे अकाउंट फ्रीज हो गया तो उसको टाइमली हियरिंग्स करके अनफ्रीज करने की भी जरूरत है, क्योंकि हो सकता है उस व्यक्ति के पहले से मान लीजिए कुछ पैसे उस बैंक में पड़े हो। इसके अलावा ये व्यक्ति जो पैसे की ट्रांजेक्शन कर रहा है, जिसने उसको म्यूल अकाउंट बनाया है, वो व्यक्ति अपने पैसे यूज कर रहा है पर उसके पैसे उसमें ऑलरेडी पड़े हुए हैं। अब उसका तो अकाउंट फ्रीज हो गया, तो उसके जो पैसे पड़े थे वो भी फ्रीज हो गया, या उसको कल को बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ी तो उसका अकाउंट फ्रीज पड़ा है। तो मुझे लगता है टाइमली हियरिंग करके उसको डीफ्रीज करना भी जरूरी। दूसरा, एक और जो सबसे बड़ी शिकायत मेरे सामने आई आनंद, जो लोगों से मैंने जब बात करी कि रिकवरी रेट बहुत कम है। मतलब जो फ्रॉड, मान लीजिए मैं मानता हूं 1,00,000 रुपए का अगर फ्रॉड हुआ है कुल, मैं एक उदाहरण के तौर पर ले रहा हूं, तो 1,00,000 रुपए में मान लीजिए 8 व्यक्ति शामिल हैं, 12,000-12,000 12,500 इतने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, तो रिकवरी रेट बहुत पुअर है। उसमें से मात्र 5-10,000 रुपए 5% 10% रिकवरी हो पाती है। और उस रिकवरी रेट कम होने का कारण जो मैंने आपको बताया कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन विभिन्न, अब एजेंसीज कौन सी हम एक बार फिर से देख लेते हैं, हमारे श्रोताओं को सुननी बहुत जरूरी है। पुलिस स्टेशन हो गया, जहां पहले रिकॉर्ड करेंगे, जहां पहले रिपोर्ट करेंगे 1930 पे कर रहे हैं तो वहां ठीक है, आप अपने नजदीक के पुलिस स्टेशन जा रहे हैं वो आपको साइबर सेल से कनेक्ट करें। वहां बैंक दूसरी एजेंसी हो गई। दूसरा, जिस प्लेटफॉर्म से आप पेमेंट करें, कई दफे ऐसा होता है कुछ खरीद बेच लोग कर रहे होते हैं, आपको कोई सामान बेचने की कोशिश कर रहा है किसी कंपनी का नाम देके कि ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है आप पहले पेमेंट कर दीजिए, या कोई आप सर्विस ले रहे हैं तो किसी कंपनी का नाम लेके सर्विस की जा रही है, तो उस कंपनी को भी इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। तो मुझे लग रहा है जितनी इसमें जितनी जानकारी काम आती है आनंद, उससे ज्यादा अंग्रेजी में कहावत होती है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, मैं समझता हूँ जितनी जानकारी आज इस शो के माध्यम से जो लोग हमको सुन रहे हैं उनको मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि कोशिश तो करें कि आप इसका शिकार ना हो। और जैसे जैसे साइबर फ्रॉड के बारे में आप अखबार में भी इश्तेहार आते हैं, आकाशवाणी इसको लगातार चलाता है कि आप साइबर फ्रॉड के शिकार ना हो, तो आपको चौकन्ना रहना है। मुझे लगता है लोगों का चौकन्नापन सबसे ज्यादा कारगर है, और अब हो गया है तो उसके बारे में हम चर्चा यहाँ पर कर ही रहे हैं। सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का फायदा आनंद जो मुझे नजर आता है कि ये एजेंसी अभी भी काम कर रही है, ऐसा नहीं कि कोई नई एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने लाने को बोला है, कोई नई एजेंसी नहीं है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बन सकती है, परंतु इन एजेंसीज को आपस में तालमेल जो है उससे काफी हद तक ये रिकवरी 50-60% तक जा सकती है, अगर कोऑर्डिनेटेड वे में, यानी कि पूरे संगठित तरीके से ये सारी की सारी एजेंसीज काम करें।
1: जी हाँ, रिकवरी से जुड़े अगर कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो 2021 में सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया सरकार की तरफ से, और इसके माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी की सूचना मिलते ही संबंधित राशि को जल्द से जल्द रोकने का प्रयास किया जाता है। 31 जनवरी 2026 तक इस व्यवस्था के माध्यम से 24,65,000 से अधिक शिकायतों में 8,690 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बचाई जा चुकी है, लेकिन ये आंकड़े अभी भी बहुत कम हैं, जैसा कि शरद जी बता रहे हैं। अश्विनी जी, आपसे दो व्यवहारिक सवाल पूछना चाह रहा हूं। सबसे पहले कि जब बैंकों का सिस्टम इतना मजबूत है, अगर मैं या कोई भी इस देश का नागरिक बैंक में अपना खाता खुलवाने जाता है तो केवाईसी की सुविधा उपलब्ध होती है, सारी जांच पड़ताल की जाती है, ई केवाईसी भी होता है, इन सब के बावजूद म्यूल अकाउंट्स बड़ी तादाद में खुलना, क्या बैंकों के जो संस्थागत ढांचे में कोई कमी है? और दूसरी बात, जिस तरफ शरद जी इशारा कर रहे थे कि साइबर ठगी से बचने की जरूरत है, आज के आधुनिक दौर में जब तकनीक की भरमार है, किन बातों का ध्यान रखा जाए?
2: बिल्कुल, मैं दो बातें बताऊंगा कि खाता खुलने के लिए क्या चाहिए। आपको अपना कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर आपको एक सिम चाहिए, एक नंबर चाहिए, फ्रॉड करने के लिए भी यही चाहिए। सिम आपको पटरी पे मिल जाता है, जब तक उसको ड्यू डिलिजेंस के साथ सख्ती के साथ वो नहीं इश्यू होगा, ये काम होते रहेंगे। दूसरा, खाता खोलने के लिए भी बैंकों पर इतना दबाव रहता है कि टारगेट्स पूरे करके आप इतने खाते खोलो, और फिर कई बार वो खाते प्राइवेट एजेंट्स के थ्रू खोल जाते हैं। बीसी मॉडल है, यानी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल है, उसमें ज्यादातर लोगों को वो गुमराह करके उनके खाता खोल लेते हैं और बाद में उनको बेचारों को पता ही नहीं लगता कि उनके नाम खाता खुल गया और खाता कहीं और भेज दिया जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक सिम इशू और खाता खोलना, ये बहुत ड्यू डिलिजेंस के साथ सख्ती के साथ इसके ऊपर खुलने चाहिए। दूसरा, जहां आपने कहा कि बचने के लिए, क्या होता है कि हम ट्रैप कहां होते हैं, हम लालच में ट्रैप होते हैं। सोशल मीडिया पर इतने तरह के प्रलोभन आते हैं कि हम फटाक से उसमें फंस जाते हैं और उसके अंदर हम फंस जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट समझ सकते हैं कि आपके पास फोन आया, आपको उन्होंने वो किया, लेकिन यहां तो हम खुद ही फंस रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर इतनी सारी एड आती हैं, हमें सोचना होगा कि ये हमें क्यों फ्री दे रहा है, या हमें ये क्यों एक्स्ट्रा दे रहा है, मार्केट में इसका रेट ज्यादा है, ये हमें सस्ता इतना

0: सस्ता कैसे मिल रहा है? या किसी ने हमें रेस्टोरेंट में हम खाना खाने के अगले दिन फोन आ गया कि भाई आपको फ्री जो है एक और डिनर या ब्रेकफास्ट दे रहे हैं, तो वो क्यों? यानी वो अगर हम थोड़ा सा भी अपने दिमाग के इसको खोल के रखेंगे ना, तो मुझे लगता है हम उस ट्रैप में नहीं फंसेंगे। लेकिन हम आंख बंद करके सोशल मीडिया पर टक टक टक टक करते जाएंगे तो हम उनके ट्रैप में फंस जाएंगे। तो दो चीजें हैं, एक तो बचना है और दूसरा सरकार को इस खाते को खोलने और सिम को इशू करने के लिए जब तक सख्ती नहीं होगी, आप इन चीजों को नहीं रोक सकते।
1: शरद जी, जब हम साइबर फ्रॉड की बात कर रहे हैं या इससे जुड़े रोकथाम की बात कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात न करें तो ये चर्चा अधूरी रहेगी। पहले के ज़माने में जो पारंपरिक मनी लॉन्ड्रिंग होती थी उसके मुकाबले जो एआई के इस्तेमाल से अब डिजिटल मनी लॉन्ड्रिंग की गति बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। एआई दोनों ही तरीकों में इस्तेमाल हो रहा है, पहली तो साइबर ठगी में और दूसरा उसके बचाव में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पूरे परिदृश्य में दोनों तरफ से एआई की भूमिका को कैसे देख रहे हैं आप?
2: देखिए, अगर हम एआई की भूमिका पहले उस तरफ से देखें कि क्या हम ठगी से बच सकते हैं, मुझे लगता है ज्यादा जरूरी वो है। तो एआई के अभी टूल्स आप बैंक तो लगा सकता है, पर एक किसी निजी व्यक्ति के लिए ये टूल लगाना कि ये असली है नकली है, क्योंकि एआई में भी आपके सामने जो शख्सियत आती है, क्योंकि फेसलेस काम होता है, ज्यादातर तो फेसलेस होता है, बहुत कठिन होगा। और इसमें मैं अभी जो अश्विनी ने बात कही, मैं आपकी इजाजत से उसमें जोड़ना चाहूंगा, ये आपके सवाल से भी बात जुड़ी हुई है। जब मैंने प्रिवेंशन की बात करी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि आप कोशिश करें कि आप इसमें फंसे ना। अब देखिए, हम म्यूल अकाउंट की बात कर रहे हैं। अब जिस व्यक्ति ने म्यूल अकाउंट खुलवाया है उसकी तो ड्यू डिलिजेंस पूरी है, उसने अपना आधार दिया है, उसने अपना पैन दिया है, उसके पास वो नंबर भी सिम कार्ड, जैसे अश्विनी पटरी वाले बता रहे थे, उसके पास पटरी वाला नहीं, उसने बकायदा एक ऑथराइज्ड सेंटर से जाके सिम लिया है, परंतु अकाउंट खुलवा लिया। अब बाद में वो लालच में आ गया। तो मैं यहाँ पर जो बड़ा संदेश जो मैं देना चाहता हूँ, आज जो लोग हमको सुन रहे हैं, आकाशवाणी की पहुंच तो पूरी देश में है, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा, आपके पास यदि कोई भी व्यक्ति आता है और वो कहता है कि हमारा बैंक अकाउंट नहीं खुल रहा है, आपका बैंक अकाउंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैं ये मेरे साथ बीता हुआ है, किसी स्टूडेंट का मेरे पास आया, उसने कहा जी मेरे बैंक अकाउंट अभी खुलवाया है मेरे पेरेंट्स ने, और मेरे पास कोई फोन आया है कि आपको हम 10,000 रुपए कमीशन देंगे, आपका तो स्टूडेंट का अकाउंट है तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आप हमसे 10,000 रुपए महीने के लेते रहिए। तो स्टूडेंट के लिए बड़ा अट्रैक्टिव था, वो एक मिनट में मान जाता। उसके बाद वो तो उसके घर पे बात हुई, फिर उनका पेरेंट्स मुझे जानते थे, मेरे से बात हुई, तो हमने उसको मना कर दिया। आपको शक हो जाना चाहिए जैसे ही कोई व्यक्ति, अब ये मेन बात है, ये सुनने वाली बात है, जैसे ही कोई व्यक्ति आपको ये कहे या कोई दूसरी तरफ से एआई टूल आपको ये कह रहा है कि आप एक बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए, उसमें पैसे आया करेंगे और इसके लिए अलग से अकाउंट होगा, तो यहां पर आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। हम क्योंकि यहां पर म्यूल अकाउंट डिस्कस कर रहे हैं आनंद, तो ये बात श्रोताओं के लिए जाननी बहुत जरूरी है। जिसने अकाउंट खुलवाया है वो इनोसेंट है, उसको उस समय जब अकाउंट खुलवाया था तब उसके सामने ऐसा कुछ नहीं था, बाद में उसने अपने अकाउंट को बेचा या किराए पे दिया। आपका अकाउंट ना तो किराए पे देने की चीज है, आपका अकाउंट ना बेचने की चीज है, आपके अकाउंट केवल आपके पैसे आपके ट्रांजैक्शंस के लिए है, किसी भी थर्ड पार्टी को। ये तो वैसे भी कल को मान लीजिए साइबर फ्रॉड नहीं भी है, कोई व्यक्ति आपके अकाउंट में वैसे आपकी जानकारी से भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, हो सकता है वो पैसे का सोर्स जो है वो क्रिमिनल हो, तो अगर क्रिमिनल होता है तो अगर वो व्यक्ति कल को जेल जाता है तो आप तो उसके पार्टनर माने जाएंगे उसमें, जो कि अमूमन होता है। तो मुझे लगता है कि व्यक्ति को अपने बैंक अकाउंट को पहले तो किसी को एक्सेस नहीं देना चाहिए। कोई लालच दे आपको कि आपके हम इतने पैसे देंगे, आप अपना अकाउंट हमें इस्तेमाल करने दीजिए, कितने भी पैसे ऑफर करें, मुझे लगता है उस व्यक्ति को, अनलेस कि वो आपका ब्लड रिलेटिव है, आपके घर का माता पिता है, भाई बहन है, तो अलग बात है, पर कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपको कर रहा है, अनजान क्या मैं कहता हूं, अगर दूर की जान पहचान का भी है तो भी आपको नहीं करना चाहिए। आपके अकाउंट में किए गए हर जमा और हर विड्रॉल के लिए जिम्मेवार पूरी तरह से आप होंगे। कल को वो व्यक्ति अगर फंसता है तो आप उसके साथ फंसते हैं, यू बिकम अ पार्टनर इन क्राइम, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, आप उसके साझीदार बन जाते हैं उस अवैध गतिविधि में। आनंद
1: जी, इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अश्विनी, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके खातों का गलत इस्तेमाल इस समय हो रहा होगा, जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये आरबीआई को एसओपी बनाने को कहा है, और उनको अगर बहुत बाद में पता चला कि उनका अकाउंट एक तरीके से म्यूल अकाउंट है या उस अकाउंट का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है, अब वो चाहते हैं कि वो बैंक को बताएं या पुलिस में जाकर बताएं, लेकिन उनके मन में झिझक है कि ऐसा करने से वो भी उस जांच के दायरे में आ जाएंगे और उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए?
0: नहीं नहीं बिल्कुल, आपके खाते में कोई पैसा आया है और आपको पता है कि ये सोर्स इसका जो है मेरे लिए नहीं है, ये मनी ना मेरे किसी फ्रेंड ने, रिलेटिव ने, किसी ने भी ट्रांसफर नहीं किया, ना मेरी पेंशन है, सैलरी है, कोई डिविडेंड नहीं आया, तो उसको ना तो उस व्यक्ति

0: फोन करने पर वापस करना चाहिए और उसको ये कहना चाहिए आप अपने बैंक के थ्रू ही इसको जो है रिवर्स करवाएं, और अपने बैंक को बता देना चाहिए कि दिस मनी डजंट बिलोंग टू मी, तो आप इसको जो है अपना वो कर लीजिए। क्योंकि बाद में जब वो, जैसे कोहली जी कह रहे थे कि जब वो इन्वेस्टिगेशन होगी और वो मनी जो उस ट्रेल में थी वो आपके अकाउंट में आई है, तो आपका अकाउंट भी सीज हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए पहले ही आपको वो करना चाहिए। और ऐसे केस में जहां आपकी गलती नहीं है, आपके खाते में पैसा कोई डाल दिया गया है, और उसके लिए भी कोर्ट ने पहले भी कहा है, बार बार कहता है कि जितना वो ट्रांजेक्शन आई है उस खाते को ही फ्रीज बैंक करे, बाकी उसके खाते को ऊपर जो है वो फ्रीज ना लगाए, ताकि उसको मुश्किल ना हो। क्योंकि वो तो कल्प्रिट नहीं है, वो तो इनोसेंट है और किसी ने उसके खाते में डाला है। तो इसलिए अपने खाते को रेगुलर हम देखते रहें, और जो हमने फोन नंबर दे रखा है उस पर भी देखते रहें कि मैसेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। नहीं आ रहे तो हम बैंक से ध्यान रखें, क्योंकि कई बार जो इस तरह के लोग रहते हैं वो बैंक में मिलकर या कुछ भी करके जो है आपका मोबाइल नंबर जो वहाँ फीड है उसको भी चेंज करवा देते हैं, ताकि कोई ट्रांजेक्शन वो करते हैं तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती। तो इसलिए सतर्क रहना भी बहुत जरूरी है, ताकि हम थोड़े थोड़े समय में अपनी चीजों को टटोलते रहें।
1: शरद जी, कार्यक्रम में समय नहीं है, आकाशवाणी जन जागरूकता का एक बड़ा माध्यम है, साइबर ठगी से बचने के लिए आप लोगों को जागरूक रहने के लिए संक्षेप में क्या संदेश देंगे?
2: बस मैं यही कहना चाहूंगा संक्षेप में कि ये जो म्यूल अकाउंट है ये इसी प्रकार से होता है कि एक जगह जैसे बैंक में रॉबरी होती है, बैंक को लूटा जाता है, उसके लिए जैसे कार इस्तेमाल की जाती है, तो बैंक को लूटने के लिए जैसे कार है, ऐसे ही म्यूल अकाउंट आपका समझ लीजिए लूटे जाने का एक साधन बन जाता है। सतर्क रहिए, चौकन्ना रहिए, यही सबसे बड़ा इसका सोल्यूशन है। और अगर हो भी जाए तो घबराइए नहीं, जो तरीके बताए गए हैं कार्यक्रम में उनको फॉलो करिए, और आपका पैसा सरकार से, सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन की वजह से और जो उसके अगेंस्ट एक्शन लिए जाएंगे अवश्य वापस आएगा।
1: आज की चर्चा खत्म हो रही है, लेकिन साइबर अपराधियों की कोशिशें नहीं, वो न दिन देखते हैं, न रात, न उम्र, न पेशा। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सामने एक छात्र है, किसान, सैनिक, व्यापारी या कोई बुजुर्ग। उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, आपकी एक गलती। याद रखिए, दुनिया की सबसे मजबूत तिजोरी भी उस समय बेकार हो जाती है जब उसकी चाबी हम खुद किसी और को सौंप देते हैं। डिजिटल युग में हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा सिर्फ पासवर्ड नहीं, जागरूकता है। आपकी सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी साइबर सुरक्षा है। आज अगर हम अपने बैंक खाते, अपने डेटा और अपनी डिजिटल पहचान की रक्षा करने सीख जाएं, तो न केवल अपनी मेहनत की कमाई बचाएंगे, बल्कि एक सुरक्षित, विश्वसनीय और सशक्त डिजिटल भारत के निर्माण में अपनी शानदार भूमिका भी निभाएंगे। शरद जी आपका और अश्विनी जी आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए और विशेषज्ञ राय आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद।
0: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे साइबर धोखाधड़ी से निपटने और अवैध बैंक खातों पर रोकथाम से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है।

0: क्वार्टरफाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और अपने अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी। तथाकथित यौमे इस्तेहाद साल यानी शोषण दिवस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा झूठ फैलाने के ये हताश प्रयास केवल मानवाधिकारों के अपने दयनीय रिकॉर्ड और आतंकवाद के वैश्विक केंद्र के रूप में उसकी स्थिति से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान हटाने के लिए किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वर्तमान में जम्मू कश्मीर में मौलिक अधिकारों के क्रूर दमन का साक्षी है। बलोच वॉयस एसोसिएशन बीवीए ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 63वें सत्र से पहले एक रिपोर्ट में पाकिस्तान द्वारा बलूचिस्तान प्रांत में मानवाधिकारों की स्थिति बिगड़ने का आरोप लगाया है। 17 पन्नों की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बलूचिस्तान का संघर्ष राजनीतिक प्रकृति का है और लंबे समय से कथित उपेक्षा, आर्थिक शोषण और मानवाधिकार उल्लंघनों के कारण वहां असंतोष बढ़ा है। रिपोर्ट में जबरन लोगों को गायब किए जाने, न्यायेतर हत्याओं, नागरिक स्वतंत्रताओं पर रोक और असहमति की आवाज दबाने के आरोप लगाए गए हैं। इसमें पाकिस्तान के जबरन गुमशुदगी मामलों की जांच आयोग और मानवाधिकार आयोग की रिपोर्टों का भी हवाला दिया गया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज श्रीलंका की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और महासागर दृष्टिकोण के अंतर्गत श्रीलंका के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की। विदेश सचिव के रूप में श्रीलंका की ये उनकी पहली यात्रा थी। विदेश सचिव ने इस यात्रा के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, प्रधानमंत्री डॉ हरणी अमरासुरिया और विदेश मंत्री विजयथा हिरात से मुलाकात की। उन्होंने विदेश मामलों, विदेश रोजगार और पर्यटन सचिव अरुणी रणराजा से भी बातचीत की। विदेश सचिव ने विपक्ष के नेता सजित प्रेमदासा से भी मुलाकात की तथा श्रीलंकाई तमिल और भारतीय मूल के तमिल समुदाय के नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें की।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों पक्षों ने भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय मुद्दों और परियोजनाओं के संबंध में चल रहे सहयोग की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने चक्रवात दितवाह के बाद घोषित 45 करोड़ डॉलर के पुनर्निर्माण पैकेज सहित विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने रेलवे परियोजनाओं के लिए 25 करोड़ डॉलर तथा पशुधन और अन्य प्राथमिकता वाली आवश्यकताओं के लिए 10 करोड़ डॉलर के भारतीय रुपये में दिए जाने वाले दो ऋणों के संबंध में हुए समझौते का स्वागत किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति की उपस्थिति में श्रीलंका सरकार के वित्त सचिव और भारत के उच्चायुक्त ने भारतीय निर्यात आयात बैंक और श्रीलंका के वित्त मंत्रालय के बीच हुए समझौते का आदान प्रदान किया। दोनों पक्षों ने विद्युत ग्रिडों को आपस में जोड़ने की परियोजना, संपूर्ण सौर ऊर्जा परियोजना और त्रिकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने सहित ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के तौर तरीके पर भी चर्चा किया। उन्होंने श्रीलंका विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निविदा प्रक्रिया को यथाशीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से आदित्य प्रताप से।
0: मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुगरबर्ग ने आज बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। मेटा को स्पष्ट कर दिया गया था कि वे मध्यवर्ती की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं और वे ही तय करते हैं कि उनके मंच पर दी गई सामग्री किसे प्राप्त होगी। उन्होंने इस पर क्षमा मांगी है और अपनी गलती पर खेद व्यक्त किया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। चीन ने अमेरिका की ओर से हाल ही में लगाए गए प्रतिबंधों के उत्तर में उसके विरुद्ध कई आर्थिक कदम उठाने की घोषणा की है, जिनमें ड्रोन के निर्यात पर नियंत्रण और 6 अमेरिकी संस्थाओं पर पाबंदियां शामिल हैं। एक रिपोर्ट।

0: चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि ये कदम चीनी ड्रोन के आयात पर अमेरिकी प्रतिबंध और 43 चीनी कंपनियों को उइघुर जबरन श्रम रोकथाम अधिनियम से संबंधित सूची में शामिल करने के बाद किए गए हैं। मंत्रालय ने अमेरिका से अपने प्रतिबंध को वापस लेने का आग्रह किया और चेतावनी दी है कि यदि नए प्रतिबंध लगाए गए तो चीन और भी कार्रवाई कर सकता है। चीन की ओर से प्रतिबंधित 6 अमेरिकी संस्थाओं में अप्लाइड डीएनए साइंसेज और गैर सरकारी संगठन ह्यूमन राइट्स इन चाइना शामिल है। उन पर चीन में व्यापार या अन्य गतिविधियों में भाग लेने से रोक लगा दी गई है। ये घोषणा चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की सितंबर में अमेरिका की संभावित यात्रा से पहले की गई है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: हॉर्मुज जल डमरू मध्य फिर से खोलने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच जारी बातचीत में प्रगति की घोषणा के बाद तेल की कीमतें 3 सप्ताह के निचले स्तर पर आ गई हैं। इससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान कम होने की संभावना बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंच कच्चा तेल लगभग 5% गिरकर $80 प्रति बैरल से नीचे आ गया है। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 5% से अधिक गिरकर लगभग $76 प्रति बैरल पर आ गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ओमान से संबंधित बातचीत में प्रगति हुई है। श्री बेसेंट ने कहा कि समझौता शीघ्र हो सकता है। दक्षिण कोरिया में भीषण गर्मी से होने वाली मौतों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि इस वर्ष मई के मध्य से जब सरकार ने भीषण गर्मी से संबंधित बीमारियों की निगरानी प्रणाली शुरू की थी तब से भीषण गर्मी से संबंधित बीमारियों के कारण 2,400 से अधिक लोग आपातकालीन कक्षों में भर्ती हुए हैं। देश की रोग नियंत्रण और रोकथाम एजेंसी के अनुसार इस वर्ष भीषण गर्मी से होने वाली बीमारियों से मरने वालों की संख्या पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम घेब्रेयेसस आज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की यात्रा पर पहुंचे जहां इबोला का प्रकोप चिंताजनक रूप से फैल रहा है। उनकी यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब कुछ स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से वेतन न मिलने पर की गई हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने में बाधा उत्पन्न हुई है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इन खिलाड़ियों में इशरानी बरुआ, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालीहा और श्री यांशी वल्ली शेट्टी भी शामिल हैं। वहीं महिला डबल्स में सोनाली सिंह और रितिका ठाकर और मिक्स्ड डबल्स में श्रुति मिश्रा और ईशान भटनागर ने अंतिम 16 में जगह बनाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के कब्जे वाले क्षेत्र में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा है। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल योषण शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। चीन ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी आर्थिक कदमों की घोषणा की जिसमें अमेरिका को ड्रोन निर्यात पर नियंत्रण भी शामिल है। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Reshma Tiwari with the World News. The headlines. New Delhi asks Islamabad to end bloodshed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, dismantle terror networks and vacate illegally occupied Indian territories. Meta CEO Mark Zuckerberg apologizes to Government of India over child abuse material, deepfake content and platform lapses. China announces retaliatory economic measures against Washington including controls on drone exports to US. And at Korea Masters Badminton Tournament, Tanvi Sharma and Anmol Kharb among 7 Indians to enter second round of women's singles in Asan.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई, विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहां के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा, तो नागरिक तो वहां खुश है।
0: विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिन भर

0: लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू होने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
1: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए आज भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा, एक्सकॉर्प तथा गूगल LLC को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मान हानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसा तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा है। तथाकथित यौमे इस्तेसाहल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले 12 रेट माइनिंग श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग हादसे का बचाव अभियान हाल के वर्षों के सबसे कठिन अभियानों में से एक था। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले थे। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी नाबालिगों को ISI द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। The Parliament has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha had passed the bill on Monday. The legislation amends the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal moved the bill in Rajya Sabha. Replying to the debate in the House, Mr. Meghwal said, in view of the increasing workload of the judiciary, the evolving nature of judicial matters and the emerging constitutional and legal interpretations issues, increasing the number of judges in the Supreme Court is the need of the hour for a timely reform. The strength of the judges of the Supreme Court was last increased from 30 to 33, excluding the Chief Justice of India, by amending the original Act through the Supreme Court Number of Judges Amendment Act 2019. After completing the business, Deputy Chairman adjourned the upper house for the day. Earlier in the day, the upper house witnessed repeated disruptions over several issues, including alleged police action during students' protest on the NEET paper.

0: होते हैं।
1: अरे वाहने मजनू,
0: लैला लैला करेगा, लैला ओ लैला, लैला लैला करेगा, ठंडी आहें भरेगा। चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत।

0: यूं ना सताओ हमको, हम जिए कैसे भला, ये तो बताओ हमको।
1: डूब मरो,
0: डूबेगा नहीं तरेगा, डूबेगा नहीं तरेगा, प्यार से हम नहीं डरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा।
2: এই ছায়া ছবি থেকেই পরবর্তী গানটি শুনবেন কিশোর কুমার এবং আশা ভোসলের ডুয়েটে।
3: ये रातें ये मौसम।